मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ का रोहतक केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 जुलाई सन 2026, सुबह के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारे प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी समाचार। समाचारों के ठीक बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।

0: के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेनू भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी

1143 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज का चिंतन, निस्वार्थ कर्म करते रहें, जो भी होगा अच्छा ही होगा, थोड़ा विलंब होगा लेकिन सर्वश्रेष्ठ होगा। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा।

ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुक्मेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षेम अमृतात्। देवों के देव महादेव भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव, जिन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, वो धरती के हर जीव का कल्याण करते हो, वो चाहे मानव हो या फिर पशु पक्षी। महादेव की भक्ति जीवन के सभी बंधनों से मुक्त कराने वाली है।

जब इंसान इस जीवन इस दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, उससे उसका मन, उसका तन और उसका मन एक अंधकार में जाते प्रतीत होते हैं, तो केवल ईश्वर ही मानव का हाथ पकड़ता है। भगवान की आराधना ही मनुष्य का सर्वप्रथम कर्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब समय के साथ साथ अपने रास्ते बदल लेते हैं। इसीलिए जो मानव सदा प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलता है, वही परम शांति का पात्र बन पाता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थीं, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहाँ संभव है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। स्वर था अनुराधा पौडवाल का, संगीत सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयो राम राम। भाइयों कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे गन्ना फसल की देखभाल इस बारे में। और

0: ये देखे हैं कि अपना टाइम भाई वो चौमासे का चल रहा है, और इस मौसम में खास तौर पर जड़े भी ये देखे हैं कि बरसात का माहौल में भाई जड़े भी हो रही है, बढ़िया है, लेकिन नहीं हुई है तो भाई राम जी राखा आस भी हो जावे। और जड़े भी बात यह आ जाए कि जो भी अपनी किसान भैया ने साल भर की फसल है गन्ना, क्योंकि बहुत से भाई इसमें बवेरू फसल ले हुए हैं, बहुत से भाई इसमें ये देखे हैं कि अगर चाल की जो पेडी वाली फसल है जिसने मोडी फसल बोलते हैं वो ले हुए हैं, कई जगह हैं अपने भाई बरसात का टाइम में बहुत से भाइयों ने ये देखे हैं कि जड़े भी फसल बढ़िया खड़ी है हमारी, और बढ़िया फसल ने एक तो हमें साफ़ सुथरी फसल हो उन्हें भाई बंधाई की टाइम पर आवश्यकता पड़े है, क्योंकि किसान भाई अगर इसने नहीं बंधवा होगा तो आगे चाल की भाई इसमें गिरने की समस्या काफ़ी आ जाए है, गिरने की वजह से इसमें काफ़ी नुकसान हो जाए भाई, अपने जो चूहे हैं मूस्टे जिस नाम कह दे हैं काफ़ी नुकसान कर दे हैं, थोथा बना दे हैं अपना गन्ने ने, और पड़न के बाद में जो गन्ना हो लगभग दो तीन जगह तक मुड़ जाओ है, पर्याप्त तो वजन जो है नहीं ले पाता, बीच में तो थोथा हो जाओ है। और ये देखे हैं कि देखभाल में तो भाई चौमासे तो पहले अपना जो खाद पानी का प्रबंध है अगर वो किसान भाई पूरा टाइम सर कर ले है तो बढ़िया रहा है, नहीं अन्यथा के वो है कि भाई जो बरसात के बाद में खाद डालेंगे किसान भाई उस आगे चाल की काचापन फसल में हमारी मितना रहेगा, जो कीट पतंगे हैं वो काफ़ी इसमें नुकसान करेंगे, कहीं ना कहीं बीमारियां का भय होगा, लाल कीड़ा है सकेल कीड़ा है वो काफ़ी नुकसान करेगा, इसमें बीज तो थोथा हो जाएगा, वो वजन गन्ना हमारा जो नहीं ले पाओगा जो पर्याप्त किसान भाई ने मिला करदा। चोटी अगोड़ा बेधक की कीट के लिए भाई खास तौर पर जून जुलाई में अपना कीटनाशक अगर किसान भैया ने नहीं डाली हो तो भाई अब लगभग तुरंत बाद अपना 13 किलोग्राम इसमें जो फ्यूराडान नाम की दवाई है 3G की ताकत की खाद के साथ मिला के हम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें डाल देवा, इसके तुरंत बाद भाई हल्की सिंचाई हमने करनी ज़रूरी है, अगर बरसात हमारे पास हो रही है ठीक ठाक सिंचाई हमारा काम चल रहा है तो बढ़िया है, अन्य था कि वो फिर हमने भाई ट्यूबवेल का पानी है या फिर हमारे पास नहरी पानी की व्यवस्था है तो इसमें किसान भैया ने जो पानी है वो देना पड़ेगा। यदि नाइट्रोजन खाद की शेष आधी मात्रा लगानी रह रही हो पूरी नहीं करी हो तो भाई समय निकाल की पूरी हम दे दें, क्योंकि हरेक जगह वह पर्याप्त बरसात ही बनी हुई है, जड़े जड़े ही किसान भाइयों ने जरूरत थी, लेकिन कोशिश यह करें कि बीचों मास से तो पहले अपनी जो खादें हैं कौन सी भी है चाहे भाई अड़ाई नड़ाई के बाद में है या पहले है चाहे वो खरपतवार निकाल के हमने निराई गुड़ाई करके देनी हो दे लें। बसंतकालीन फसल में 62-60 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 130 किलोग्राम यूरिया की जरूरत रहेगी, इसमें 20 किलोग्राम फास्फोरस यानी 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की इसमें आवश्यकता रहेगी, और 20 किलोग्राम पोटाश, क्योंकि जिंक पोटाश एक ऐसी फसल ऐसी वह अपनी रासायनिक तत्व हैं जो भी अपनी ज़मीन में खास तौर पर तो 16 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत हो है, लेकिन हर एक साल जब भी हम बिजाई करा उससे पहले जिंक है पोटाश है सल्फर है इसका भाई हमने भरपूर मात्रा में प्रयोग करना है जब जाके हर एक फसल ठीक हो पाओगी। वैसे तो यह कहा जा है कि अगर मिट्टी परीक्षण की जांच के आधार के ऊपर हम खाद दे हुए हैं तो सबसे बढ़िया रहा है, और इसमें 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास या भी बिजाई का समय दे देवा तो भी ठीक रहा है, 1/3 नाइट्रोजन दूसरी और तथा 1/3 नाइट्रोजन चौथी जो सिंचाई आ जाए उसके साथ हमने देनी है। तो ध्यान रखें कि भाई जो मोटी फसल है उसमें 1.5 खादा की मात्रा हो जाए, जो बवेरू फसल है उसमें थोड़ी ही कम खाद की मात्रा हो जाए, लेकिन साफ सफाई निराई गुड़ाई का हर एक फसल में बहुत महत्व रहा है।
1: कृषि की बातें अभी आपने सुना है कार्यक्रम आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार हम अपने केंद्र से रिले करेंगे।
2: वाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नंदन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्व निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस

0: सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्वनिदेशकः वी कामकोटिः, पूर्वशिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गतशुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दण्ड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी शिक्षामन्त्रिणः कार्यभारं अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मन्त्रालयैः सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षामंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रासनगरे 27वां कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्ध विराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपतिः ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्णपदकं विजितवती इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे

0: को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: कार्यबल में आसूचना ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। लगभग 24 घंटे की खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 300,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई ने असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतना उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर चौथा राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। श्री शाह ने कहा कि शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices.

सुबह सवेरे कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7:35 पर। युवा संसार में शाम 5:30 बजे आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो जीनियस।

सुबह 7:15 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे R.S. विष्ट का गाया राग अहिर भैरव। लोक संगीत कार्यक्रम में सुबह 8:30 कलाकार होंगे भीम सिंह।

रात 8:25 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम। दोपहर 1:10 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे शाम 7:30 बजे। एक फिल्म से कार्यक्रम का समय रहेगा 9:15। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। याद रखिए, जल है तो कल है। जल का संरक्षण करें, इसे व्यर्थ बहने से रोकें।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे R.S. विष्ट का गाया राग अहीर भैरव। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कार्यक्रम सुबह सवेरे में मैं शशि आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे ही होंगे। और जिस तरह का ये मौसम है, ये तो जिसमें प्रकृति का हर जीव हर कण पोषित पल्लवित होता है, ऐसे में तो हमारे श्रोता भाइयों का खुश होना लाजमी है ही, क्योंकि जो गर्मियाँ हैं उनकी ऐसे समय में, जबकि आषाढ़ का महीना भी जाने को है, तो ऐसे समय में धीरे धीरे गर्मियां भी जाने लगती हैं, बारिश का मौसम है और आने वाले समय में हल्की हल्की ठंडक होने लगती है। हालांकि मौसम का कभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि पल भर में कब कैसा हो जाए, लेकिन इस मौसम की अगर बात करें तो जो वर्षा ऋतु का मौसम है, ये प्रकृति के हर कण के लिए बहुत अच्छा लाभदायक रहता है। साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों की जो फसल होती है इन दिनों, धान की फसल, उसके लिए भी जो बारिश का मौसम है बहुत अनुकूल माना जाता है। वैसे इंसान अक्सर खूबसूरती के मायने अपने जैसे इंसानों में ही तलाशता रहता है। किसी के चेहरे, रंग, नैन, नक्श कैसे हैं, इन्हीं सब बातों से खूबसूरती को परिभाषित किया जाता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो कुदरत या प्रकृति की है, जिसका हर जीव एक हिस्सा है। अब देखिए ना, आषाढ़ का ये महीना प्रकृति को कितना खूबसूरत बना चुका है। प्रकृति ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली है, जो हर दिन दिन ब दिन सावन के साथ बढ़ती जा रही है। यहाँ सावन आने वाला है और ये हरा रंग और गहरा होता जाएगा। आषाढ़ के महीने से बरसात की शुरुआत हो जाती है, चतुर्मास लग जाता है जिसे चौमासा भी कहते हैं, और ये बारिश का मौसम प्रकृति के कण कण में निखार ले आता है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। श्रोताओं, आज है 27 जुलाई और आज के दिन को मनाया जाता है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के स्थापना दिवस के रूप में। मूल रूप से 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित सीआरपी का गठन 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मद्रास प्रस्ताव के बाद भारत की तत्कालीन रियासतों में राजनीतिक अशांति और आंदोलनों के जवाब में और शाही नीति के हिस्से के रूप में ज्यादातर देशी राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की बढ़ती इच्छा के जवाब में किया गया था। आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। इस अधिनियम ने सीआरपीएफ को संघ के सशस्त्र बल के रूप में स्थापित किया। उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नव स्वतंत्र राष्ट्र की बदलती जरूरतों के अनुसार इसके लिए बहुआयामी भूमिका की परिकल्पना की थी। रियासतों के भारतीय संघ में और उसके विलय के दौरान इस बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने केंद्र की सरकार के विद्रोही रियासत जूनागढ़ और गुजरात की छोटी रियासत काठियावाड़ को अनुशासित करने में मदद की, जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। 1950 के दशक के आरंभ में भुज और तत्कालीन पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ और चंबल की घाटियों में कानून और व्यवस्था लागू करने में सीआरपीएफ की टुकड़ियों के प्रदर्शन के सभी पक्षों द्वारा सराहना की गई। 21 अक्टूबर 1959 को एसआई करम सिंह और 20 दूसरे सीआरपीएफ कर्मियों पर लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना ने हमला किया, जिसमें 10 लोग शहीद हो गए। बचे हुए लोगों को कैद कर लिया गया। तब से 21 अक्टूबर को भारत के सभी राज्यों में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में 1960 के दशक के आरंभिक वर्षों में घुसपैठ और सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ियों को कच्छ, राजस्थान और सिंध की सीमाओं पर भेजा गया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा किए गए हमलों के बाद उन्हें जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सीआरपीएफ ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की एक बार फिर सहायता की। इस दौरान सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भी सीआरपीएफ ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। इतिहास में पहली बार सीआरपीएफ की 13 कंपनियों को हवाई मार्ग से श्रीलंका में भारतीय सेना शांति सेना में शामिल होने के लिए भेजा गया, ताकि उग्रवादी तत्वों से लड़ा जा सके। इसके अलावा सीआरपीएफ कर्मियों को संयुक्त राष्ट्रीय शांति सेना के हिस्से के रूप में हैती, नामीबिया, सोमालिया और मालदीव में भी कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए भेजा गया। 70 के दशक में उत्तरार्ध में जब चरमपंथी तत्वों ने त्रिपुरा और मणिपुर में शांति भंग की, तो सीआरपीएफ बटालियनों को भारी संख्या में तैनात किया गया। साथ ही ब्रह्मपुत्र घाटी में भी अशांति थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ संचार व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भी सीआरपीएफ को भारी बल के साथ तैनात करना पड़ा। पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए बल की प्रतिबद्धताएं आज भी बहुत अधिक हैं।

सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। और श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 27 जुलाई को हम याद करते हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि। अब्दुल कलाम आजाद, जिनका पूरा नाम जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आजाद था, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ। इन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में ये विख्यात थे। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। विज्ञान की दुनिया में चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण ही राष्ट्रपति भवन के द्वार उनके लिए अपने आप ही खुल गए थे। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसके लिए सब सहज हो जाता है और कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अब्दुल कलाम इस उदाहरण का प्रतिनिधित्व करते नजर आए थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था। उनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से भी कम नहीं थी। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत था कि वो सभी धर्म, जाति एवं संप्रदायों के व्यक्ति नजर आते थे। वो एक ऐसे स्वीकारक भारतीय थे जो सभी के लिए एक महान आदर्श बन चुके थे। विज्ञान की दुनिया से देश का प्रथम नागरिक बनना कपोल कल्पना मात्र नहीं, क्योंकि ये एक जीवित प्रेरणा की सत्य कथा है। अब्दुल कलाम आजाद का जो व्यक्तित्व है, वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। वेशभूषा, बोलचाल के लहजे, अच्छे खासे सरकारी आवास को छोड़कर हॉस्टल का सादगीपूर्ण जीवन, ये बातें उनके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक सम्मोहक प्रभाव छोड़ती हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, देश के विकास और युवा मस्तिष्कों में उन्हें प्रज्वलित करने में अपनी तल्लीनता के साथ वे पर्यावरण की चिंता भी बहुत करते थे। साहित्य में रुचि रखते थे, कविता लिखते थे, वीणा बजाते थे और अध्यात्म से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। डॉक्टर कलाम में अपने काम के प्रति जबरदस्त दीवानगी रही। उनके लिए कोई भी समय होता तो वो काम का ही समय होता था। वो अपना ज्यादातर समय कार्यालय में ही बिताते थे। देर शाम तक अलग अलग कार्यक्रमों में डॉक्टर कलाम की सक्रिय भूमिका और स्फूर्ति काबिले तारीफ रही। ऊर्जा का ऐसा प्रवाह केवल गहरी प्रतिबद्धता और समर्पण से ही आ सकता है। डॉक्टर कलाम पूरी तरह से शाकाहारी रहे। वे मदिरा पान से बिल्कुल परहेज करते थे। उनका निजी जीवन अनुकरणीय है। इन्हें मिले सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का नेशनल डिजाइन अवार्ड, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का डॉक्टर बीरेन रॉय स्पेस अवार्ड, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार, विज्ञान के लिए GM मोदी पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। डॉक्टर कलाम भारत के विशिष्ट वैज्ञानिक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। भारत के नागरिक सम्मान के रूप में डॉक्टर कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न सम्मान से गौरवान्वित किया गया।

और इस गीत के साथ ही समय हो चला है कार्यक्रम सुबह सवेरे को यहीं संपन्न किया जाए। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। इसी मंगल कामना के साथ अपने दोस्त शशि को दीजिए इजाजत कार्यक्रम सुबह सवेरे संपन्न करने की। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, सुबह के 8 बजने को है। ठीक 8 बजे से आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से। और ठीक 8:30 पर आप फिर से जुड़ जाएंगे आकाशवाणी रोहतक के अपने कार्यक्रमों के साथ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीले

0: कड़ी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों की गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव

0: की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
1: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
0: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
1: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे।

0: यार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
4: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं भीम सिंह।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।
2: ये कहानी है एक नर्स

0: और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
5: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रही हैं लोक संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं भीम सिंह।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार थे भीम सिंह। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके दोस्त शशि का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, लेकर हाजिर हूँ आपके भेजे गए खत और उनमें बसी कुछ फरमाइशें।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत अभी आपने सुना फिल्म जुर्माना से। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत आर डी बर्मन का, पसंद आप सभी की। पुरानी दिल्ली सीताराम बाजार से नरेश देवी। इसी गीत को सुनना चाहा था जातुका किशनपुर से, आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम, नाज परवीन। दिल्ली शहर मोरी गेट से खत लिखा कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। गांव नथाना पंजाब से चिट्ठी लिखी हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता ने। जुर्माना फिल्म का गीत ही सुनना चाहा था धामणी मानोरा से, पेंटर तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश, आदेश, किरण, अमोल, गुलशन, प्रज्वल और दादुल्या डेरे ने। सोमठाणा जिला वाशिम से पत्र लिखा विशाल तुलसीराम कवाणे, ललिता पायल और आरुष कवाणे ने। जसपुर उत्तराखंड से खत भेजा है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगले गीत के लिए मैं फरमाइश लिख भेजी है पटेल नगर मलूट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू ने। गांव बलियाली जिला भिवानी हरियाणा से खत लिखते हैं दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण, ममता, कमल, गर्विश और तमन्ना।

गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक, सुशील, रमा, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम और आर एस पुरी। आप सभी ने सुना चाहा है आम्रपाली फिल्म का गीत। गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में है, बोल शैलेंद्र के हैं, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। मोहम्मद हलवाईयान, शेरकोट बिजन, शेरकोट जिला बिजनौर से खत लिखा। मोहम्मद वक्कर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से खत लिखा प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने। शेरपुर कला गाजीपुर से फरमाइश भेजी है अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय ने। और ये चिट्ठी हमें भेजी है व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से। लिखने वालों के नाम हैं डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री, गौरव। और मॉडल टाउन करनाल से आप हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, किरण ठाकुर और विनीता वर्मा। आप सभी को आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में मधुमती फिल्म का गीत। गीत शैलेंद्र का है, संगीत सलिल चौधरी का।

मुकेश की आवाज में गीत अभी आपने सुना फिल्म मधुमति से। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से, और गांव कैरों जिला तरन तारण पंजाब से खत लिखा है गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहत और गुरशप्त ने। भटिंडा रोड डबवाली से आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। वैष्णव कॉलोनी सनावत से खत लिखा है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। छत्रपति संभाजी नगर से चिट्ठी लिखी है राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल राजेश ने, और ये खत हमें लिख भेजा है। पुणे से लिखने वालों के नाम है पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाडोदे, चंद्रप्रभा वाडोदे। आप सभी ने सुनना चाहा है हिमालय की गोद में, इस फिल्म का गीत। आवाज मुकेश की है, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। इस कार्यक्रम में अगले गीत के लिए मैं फरमाइश लिख भेजी है सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत, आप सभी हैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा से। नवागढ़ कटई से खत लिखा है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा और दामिनी वर्मा ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, वो ये हैं। राजनगर मधुबनी बिहार से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम, संगीता, रुद्र और रिद्धि। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी, कुसुम, पलक और पंखुरी। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मयराज और गुनगुन। कैदी मोड़ा रायगढ़ से चिट्ठी लिखी है पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, लीलू सिंह और रीतू ने। धनबाद झारखंड से आप हैं अमित कुमार सिंह, प्रियंका और समृद्धि। झाझा बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा और रवि आरती सिंह। जलगांव सोमनाथ तालुका जिला जालना से आप हैं डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक और गणेश। जलगांव से कार्तिक, अश्विनी भूतेकर। औरंगाबाद से वैष्णवी जगदाले, हरसुल, सावंगी। भाव सिंहपुरा औरंगाबाद से आप हैं वैभव, गौरव लोखंडे। और यहीं से हैं मेघराज, युवराज और रिधोरा देवी। आदर्श नगर मलोट से खत लिखा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। आप सभी को आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं दो बदन फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। गीत शकील बदायूनी का है, संगीत रवि का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। गांव खैरे का सिरसा से चिट्ठी लिखी इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन और हनी लोट ने। मसीता डबवाली से आप हैं दर्शन लोट, इंद्रजीत। और अगला खत हमें लिखा है

गांव नथाना पंजाब से। हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता ने। छोटी बलिया करजत मुंबई से आप हैं। अहमद भाई फूल वाले, दुखवा रानी, सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, आमना नशरीन और इमरान अहमद फूल वाले। गांव गोविंदगढ़ माजीवाला, श्री कर्णपुर राजस्थान से खत लिखा। राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत वडवाल, शिव सेठी, कर्णपुरी और स्माइल टुटेजा ने। मलोट कैंप पंजाब से खत लिखा। सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से आप हैं। प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्राजक्ता, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर। आप सभी ने सुनना चाहा है ठोकर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत सजन दहलवी का है, संगीत श्याम जी घनश्याम जी का।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे

गौरव, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र, एम के गुप्ता और इनके मित्रगण, छपरा दालदली बाजार से आप हैं, संजय कुमार गुप्ता, संजीत, सर्वजीत और सुधांशु गुप्ता, सीतामढ़ी महावीर स्थान से प्रभात कुमार गुप्ता, अरविंद, मंटू और निक्की, फुलवारी शरीफ पटना से ख़त लिखा है अविनाश चंद्र, ज्योति गुप्ता, जानवी और पीहू ने, कस्बा बराड़ा ज़िला अम्बाला से ख़त लिखा रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत और गुट शब्द राहुल ने, और ये ख़त में भेजा है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से, लिखने वालों के नाम है कुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा, छत्तीसगढ़ बेमेतरा से आप हैं पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भव्या और सुषमा सारथी, आप सबकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में खामोशी फिल्म का गीत, गीत गुलजार का है, संगीत हेमंत कुमार का।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है जामरून अर्धापुर से। फरमाइश भेजने वालों के नाम हैं दुर्गादास जोशी, गंगाधर,

गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, साध्वी और परभणी हूँ, साथी गणेश हरगांवकर। रहमानिया मोहल्ला महसूल सीतामढ़ी बिहार से खत लिखा तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुसरत जहानाज, वसीम अकरम, नदीम, शमीम और अमन अकरम। भटिंडा रोड डबवाली से आप है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। गांव मटोर जिला कैथल से चिट्ठी लिखी है रामदिया, नीलम, अजय, विजय और तमन्ना ने। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला, गैरी, विकास, प्रियंका, रमन, रितु, भविंश, मिशेल, किंशुक और दीपांशी इंदौरा। आप सभी ने सुनना चाहा है जौहर महमूद इन गोवा फिल्म का गीत, आवाज मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की है। गीत कमर जलालाबादी का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

चकला बाजार सामाना से खत लिखा है पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल और समस्त खुशदिल परिवार ने। पुराना तालाब डुमराव से आप हैं वली उल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी और इनकी बेटी सोनम। सारिमपुर बक्सर से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातमा नाज अंसारी और

मोहम्मद समी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से ख़त लिखा है डब्ल्यू अंसारी, वसीम अकरम और बेबी अंसारी ने। छटिया पोखरा डुमराव से आप हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। हुसैनपुरा मऊनाथ भंजन से हैं निज़ामुद्दीन अंसारी, इस्तियाक अहमद और जकी अहमद। और ये चिट्ठी हमें लिखी है मुकाम ही पर सोगा तालुका औसा ज़िला लातूर हून से। लिखने वालों के नाम है उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजनबी शेख, शाकिर इस्लामबी, बाबा शेख, करिश्मा, सिमर, सानिया शाकिल पठान, बिस्मिलाबी शेख, गदर शेख और नीलोफर शेख। तालुका बिलोली ज़िला नांदेड़ से हैं चांदनी अयूब, बाल राजे, अमन सैयद और माहिरा सैयद। और ये चिट्ठी हमें लिख भेजी है चंडीगढ़ से। लिखने वालों के नाम है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से गीत सुनना चाहा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने। आप सबकी पसंद पर आपको सुनवाते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में हरियाली और रास्ता फिल्म का गीत। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

बीएडी से खत लिखा राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत कवहानकर, राही सरिता और प्रिंस। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत कवहानकर और प्रणीता कवहानकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश कवहानकर, श्वेता, ध्वनि और टुकटुक गवहानकर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतद बिरक और मीका बिरक। आप सभी की पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है राम और श्याम। गीत शकील बदायूनी का है, संगीत नौशाद का।

0: इस गीत के साथ ही अपने दोस्त शशि को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न करने की। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2: हमें भविष्य के लिए सोचना है, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपंडे का, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोड़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को

0: विक्षेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि असाधारण साहस, अटूट समर्पण तथा उच्चतम मानकों के साथ सीआरपीएफ ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ अटूट साहस, असाधारण कर्तव्यनिष्ठा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से सीआरपीएफ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गौरव के अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The government will introduce the public examinations prevention of unfair meets Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, he said that the task force will focus on examination reforms and based on its report, steps will be taken as soon as possible to ensure the credibility of upcoming examinations. He said that the country's examination system must be trustworthy, transparent and leverage technology to the maximum extent.
0: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
2: Prime Minister Narendra Modi has urged young people to strengthen their connection with India's border villages. Addressing the participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi described developed villages as the foundation of a Viksit Bharat. The Prime Minister lauded the growing role of youth in nation building through the Mera Yuva Bharat, My Bharat platform. Prime Minister said the youth of the country are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Mr. Modi said, when the energy of youth is channeled towards addressing national challenges and finding solutions, the future of the country becomes brighter. He added that when young people connect with grassroots realities, they strengthen India's journey towards inclusive development.

0: विकसित वाइब्रेंट विलेज की ये यात्रा सबको जोड़ने और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है। और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है। भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा, उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे।
1: The nation pays tribute to former President and renowned scientist Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary today. He played a crucial role in India's space and missile development programs. Dr. Abdul Kalam is also known as the Missile Man of India. He died on this day in 2015. Union Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla today paid tributes to the former President Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary. Head of the Iranian Parliament's National Security Commission, Ibrahim Azizi, has warned Ukraine that a reported attack on an Iranian commercial vessel in the Caspian Sea will not go unanswered. In a social media post, Azizi said any attack on Iran comes with a cost and suggested Ukraine would face a response. IMD has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Odisha and Chhattisgarh today. East Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal, Konkan, Goa, Central Maharashtra, Uttarakhand are expected to witness heavy to very heavy rainfall at isolated places. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह के 10:10 हुए हैं। अब हमारी पहली सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर दोपहर 12:30 पर दूसरी सभा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर डीटीएच और न्यूज़ जोन आईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
0: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
0: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी, हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
0: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी, ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
1: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहब
0: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी
1: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
0: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
0: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की, बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
0: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।

0: इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: जी तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था।

0: को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
1: नाथ,
2: महात्मा,
1: प्रभु,
2: महात्मा,
3: प्रभु, प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
4: वहाँ अंगुलीमाल है।
3: हाँ प्रभु।
4: वो बहुत बड़ा डाकू है।
5: प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
4: जाएं।
6: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
3: प्रभु,
7: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहां?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत?
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लाओ।
1: हाँ ठीक है।

0: जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल के। ये कार्यक्रम

0: हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्सकपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
3: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
2: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
3: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
2: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
3: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
5: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
3: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
5: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।

0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
2: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
3: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
2: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
3: जी मैं प्रस्तुत हूं।
2: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
3: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
2: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
2: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
4: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
3: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
4: जी जी,
3: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
4: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
3: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
4: जी,
3: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
4: जी मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुलके।
3: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
4: जी,
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,

0: कि राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
1: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
2: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
1: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
1: फादर कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
2: डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं,
3: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली।
4: आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार होंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूँ, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698, जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च अधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: हमें भविष्य के लिए सोचना है, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों पर लगाम कसने के लिए और अधिक कठोर कानूनी व्यवस्था लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों युवाओं की मेहनत, उनके सपनों और उनके भविष्य की रक्षा की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की आवश्यकताओं और देश के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। युवाओं के हितों की रक्षा करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी सोच के साथ सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफिया, नकल गिरोह तथा युवाओं का भविष्य लूटने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि ईमानदार और मेहनती युवाओं का विश्वास व्यवस्था में बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पहले ही बिना खर्ची के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश में पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट आधारित भर्ती व्यवस्था स्थापित की है। आज प्रदेश में योग्य एवं प्रतिभाशाली युवाओं को बिना किसी सिफारिश और बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जो सुशासन और पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन कल संपन्न हो गया, जिसमें संघ के चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष हरीश गर्ग एवं महासचिव भीमसेन सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए 200 से अधिक वरिष्ठ व्यापारी नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में व्यापार एवं उद्योग से जुड़े अनेक समसामयिक विषयों, व्यापारियों के हितों, देश के आर्थिक विकास में व्यापार जगत की भूमिका आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा अभियान को देश भर के व्यापारियों के माध्यम से व्यापार जन भागीदारी के साथ सफल बनाने का रहा। सम्मेलन से देश के समस्त व्यापारियों से आह्वान किया गया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक घर, प्रत्येक दुकान और प्रत्येक बाजार तिरंगे की शान से सजे तथा राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचे। बैठक में निर्णय लिया गया कि देश भर के बाजारों में बड़े स्तर पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। इन यात्राओं में विभिन्न सांस्कृतिक एवं देशभक्ति पर आधारित आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी। प्रमुख व्यापारिक बाजारों, व्यावसायिक परिसरों और व्यापारिक संगठनों द्वारा राष्ट्रध्वज से संपूर्ण बाजारों को सजाया जाएगा तथा प्रत्येक व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर गर्व के साथ तिरंगा फहराएगा। हरियाणा में सभी जगह प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम सुना गया। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने गांव किटवाड़ी में पार्टी कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण देखा। कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में अनेक मुद्दों पर बात करते हैं।
2: इसमें देश के प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं ने या इस देश की महिलाओं ने या किसानों ने या देश के मेहनत कश वर्ग ने जो भी अच्छा काम किया है उसको मन की बात में लाते हैं। और मन की बात सिर्फ एक कार्यक्रम भर नहीं, देश के युवाओं को आगे अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ कुछ अच्छा वो करें, इनोवेटिव आइडियाज के साथ क्या करें, कुछ समाज के लिए प्रेरणा का काम करें, कुछ सब बातें इस देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में लाते हैं। और चाहे वो संस्कृति से जुड़ी हो या मिट्टी से जुड़ी हो या खेलों से जुड़ी हुई हो।
0: इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
3: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्मी गाने।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कहके तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो,

0: ये था भाभी फिल्म का गीत। अनुराधा पौडवाल, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़ें आपने सुनी। अन्नू मलिक का संगीत था, गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने। हमारे कल के श्रोता मंच कार्यक्रम में हमारे एक सुनने वाले कह रहे थे कि उनकी पसंद का गीत हमने नहीं सुनवाया, हालांकि ये गीत कई बार हमारे फिल्म संगीत कार्यक्रम में प्रसारित होता है। बहरहाल, उन तक ये गीत पहुँचा होगा ऐसा हम विश्वास रखते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: दरिया दिल फिल्म का ये गीत आपने सुना, नितिन मुकेश की आवाज़ थी। गीत लिखा था विट्ठल भाई पटेल ने, संगीतकार थे राजेश रोशन।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

ये था तेजाब फिल्म का गीत। अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ें आपने सुनी। जावेद अख्तर के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत क्रांति फिल्म से हमने आपके लिए चुना है। नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें आप सुनेंगे। संतोष आनंद के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

क्रांति फिल्म का गीत आपने सुना, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं, संतोष आनंद के बोल, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक का गाया हुआ, साजन फिल्म का नाम है, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

साजन फिल्म से अलका याग्निक की आवाज़ आपने सुनी। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अलका याग्निक ने इस गीत को गाया था, लिखा था समीर ने। गीत को शुरू करने में थोड़ा सा जतन करना पड़ा, वह आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं कार्यक्रम का और आपको सुनवाते हैं अफलातून फिल्म का ये गीत। ललित सेन और श्वेता शेट्टी की आवाज़ें हैं, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत, गीत आनंद बख्शी का।

ये था अफलातून फिल्म का गीत। ललित सेन और श्वेता शेट्टी की आवाज़ें आपने सुनी। आनंद बख्शी के बोल थे। दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत था। कार्यक्रम का आखिरी गाना इसी बदले हुए रंग में आपको सुनवाते हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म से। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें आप सुनेंगे, विज्जू शाह का संगीत और गीत है समीर का।

बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म का ये गीत आपने सुना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें थी। गीत लिखा था समीर ने, संगीत था बिच्चू शाह का, और ये था आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गाना। नए श्रोताओं के लिए बता दें, जिन्होंने आज ही रेडियो सेट पर या हमारी ऐप पर ये कार्यक्रम सुना है, कि दोपहर की सभा में 1:10 से लेकर 2 बजे तक प्रसारित होने वाला फिल्म संगीत कार्यक्रम सप्ताह में हर सोमवार को, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को दिन में 1:10 से लेकर 2 बजे तक प्रसारित होता है। अलावा इसके हर बुधवार और शुक्रवार को आपके अनुरोध पर कार्यक्रम होता है इसी समय पर, जो कि फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम है। ये थी जानकारी आपके लिए आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। दिन के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।

0: जीता मनु भाकर को कांस्य पदक और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
5: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
0: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार

0: से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
1: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगत सिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
3: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
5: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे

0: मुफ्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भैया ने सुरेंद्र भाई की राम राम। भाई देखो, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और एक आध जगह दो तीन दिन पहले भी बरसात हुई है और कुछ जगह हमारी हरियाणा प्रदेश में भी ऐसी हैं जहाँ पे अच्छी बरसात हुई है, लेकिन ज़्यादातर जो अपना अक्षेत्र है वो अब बरसात की बड़ी बाट देख रहा है और उसमें विशेषकर जो हमारा धान का क्षेत्र है उसमें विशेषकर, क्योंकि बगैर बरसात के धान की जो हमारी फसल है उसका होना बिल्कुल असंभव हो गया है। क्योंकि सिर्फ हम ये सोचें कि ट्यूबवेल के पानी से हमने मान लो धान की फसल को अच्छी बना दें, ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बरसात का पानी होना बहुत ज़रूरी है और ये बरसात की का जो मौसम है इसमें उम्मीद तो ये करी जा है कि भाई बरसात थोड़ी बहुत ज़रूर हो गए और अब तक वो भी लेनी चाहिए थी, हम ये कह सकते हैं भाई लेट हो गई जो मानसून है ये, और लेट होने का ये भी हो गया है कि भाई जो बरसात लेट हो गया है उसमें जो हमारे किसान भाई हैं उनको थोड़ा सा परेशानी है, उसको झेलना पड़ा है। वो चाहे हम ये कहें कि भाई जो पौधे हैं धान लगाए हैं वो ख़त्म हो गया है और फिर बार बार उसमें लगाने पड़े हैं, जो पानी है वो गर्म हो गया है, मौसम अच्छा नहीं बन पा रहा धान के लिए, ये इस तरह की दिक्कत है। तो धान की जो हमारी फसल है आज अपना विषय भी यही रखेंगे कि भाई जो धान वाली हमारी फसल है उसकी हमने देखभाल किस तरीके से करनी है। उसमें सबसे पहली तो बात ये है भाइयों कि जो पानी है संभव जितना कोशिश हो सके वो ये करना भाई ताज़ा पानी हम दें, क्योंकि जो ताज़ा पानी हम देंगे तो फिर वो ठंडा रहेगा और मान लो रुका हुआ पानी है वो कुछ तो पहले थोड़ा बहुत गर्म हो है और फिर कुछ गर्मी हो जाए, कुछ मौसम की जैसे धूप आज गिर रही है तो ये मौसम की वजह से भी ज़्यादा गर्म पानी हो जाए, उसमें जितने भी पौधे हैं मान लो गर्म पानी के लपेटे में वो आ जाए हैं तो फिर वो सूख जाए हैं और कई बार बगैर पानी भी सूख जाए हैं, इसलिए पानी निकालना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें ये देखें, कोशिश करें, बाकी मान लो जैसे नहर का उसरा है वो तो तोड़ना पड़ेगा, चाहे उसमें भाई कोई भी टाइम हो वो तो टाइम के हिसाब से चल रहा है, लेकिन मान लो बिजली का वार है वो इस हिसाब से आ जाए कि भाई हमने सुबह से चलाना पड़े तो फिर कोशिश करें कि भाई हम उस में जितना भी उसके जो ताज़ा पानी है वो देने की कोशिश करें, या फिर हमारा हाथ का साधन है कुछ भाइयों के पास इंजन के साधन हैं तो वो कोशिश करें भाई जिस खेत में भी पानी निकालूँ वो शाम के समय पर निकालें, शाम के समय पर निकालने वाला जो पानी है वो पूरी रात ठंडा रहेगा और हमारी जो फसल है उसको ठीक तरीके से ले भी लेगी, बाकी इसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। और कई तरह की जो सुंडी हैं या कुछ बीमारी हैं वो भी आ जाए हैं और उसके कारण जो हमारी फसल है बहुत कमज़ोर रह जाए है, इसलिए हमें ध्यान रखना है भाई जो सुंडी हैं या जो बीमारियां हैं समय समय पर जो खेत में अपने जाकर ने उसका चारों तरफ घूम कर देखें, उसके जो पौधे हैं भाई कोई सूख गया या वो उसका क्या कारण है, नीचे की सुंडी के कारण सूख गया या पत्ता लपेट सुंडी भी कई जगह पर आई हुई है तो इसका प्रकोप भी ज़्यादा हो रहा है।

0: उसका एक मुख्य कारण यही है कि वह बरसात समय पर नहीं हो रही। यदि बरसात समय पर हो जाए तो फिर जो सुंडी है, जो पत्ता लपेट सुंडी, वो खुद ब खुद ख़त्म हो गया है, और क्योंकि ये पानी में जब गिर जाएगी ये सुंडी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनते हम इसको काबू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो कारगर बात रहे वो तो रहा बरसात के उसते हैं। ये आज बातचीत करेंगे भाई, जो धान फसल है उसकी देखभाल हमने किस तरीके से करनी है। तो जो आगे बात करेंगे उससे पहले सुनेंगे रागने राकेश किलोया और उनके साथियों की गाई हुई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

तो भैया ने ये सुनी रागनी राकेश कलोया और उनके साथियों की गाई हुई। भैया इनकी बात एक और सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर रहे थे वे जो धान फसल है उसकी देखभाल के बारे में। और ये भाइयों के सामने एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है पत्ता लपेट सुंडी की, क्योंकि ये बहुत सा क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर फूट पर जो धान की हमारी फसल चली हुई है उसमें ये आ गई। तो देखो जहाँ तक बात है बरसात की, यदि बरसात हो जाए तो ये सुंडी खुद मर जाएगी। एक चुस्त सी सुंडी वो है, और ये जुलाई से लेके अक्टूबर तक इसका जो प्रकोप है वो हमारी फसल के ऊपर बार बार उतर रहा है। तो जहाँ पे ये मान लो दिखाई देवे, या तो इसके ऊपर हम बाण रख के ने हला देंगे तो वो जब भी गिर जाए है, लेकिन अब हमारी जो फसल है वो छोटी अवस्था में है वो नहीं हो सकता। इसलिए 400 मिलीलीटर क्यूवन अल्फास दवाई है 20 cc AF ताकत की, या फिर 200 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास दवाई है 36 SL ताकत की। इनमें तो कोई भी एक दवाई लेकर 200 लीटर पानी लेकर और 1 किलो के हिसाब से हमने इसका छिड़काव कर देना है। एक धान की जो जड़ की सुंडी है ये ज़मीन के अंदर रह कर बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे है। इसका ज़्यादातर प्रकोप की हम बात करें तो जुलाई से लेकर अगस्त के महीने तक हुआ है। तो उसके लिए हम ये कृषक हैं, वह 10 किलो कार्बोरल का 4 जीगा जो दूरा है वो कृषक हैं, या 10 किलो सेविडाल 4 जी है ये 1 किलो के हिसाब से हम डाल सके हैं। बाकी इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि वह जो हमारी फसल है उसके अंदर जो पानी है वो ध्यान कर कम रखना है, और जो खरपतवार है उसका नियंत्रण समय के हिसाब से करते रहना है। ज़्यादातर इन्हीं बातों का ध्यान हमने रखना है, और बरसात होने के बाद बहुत सी जो हमारी समस्या है, चाहे वो सुंडी की हैं चाहे बीमारी की हैं, तो वो अपने आप खुद ख़त्म हो जाए हैं। बाकी बात करेंगे थोड़ा रुक कर, उससे पहले सुनेंगे रागनी राकेश कलोया और उनके साथियों की गाई हुई।

तो भैया ने ये तो सुनी रागनी राकेश कलोहिया और उनके साथियों की गाई हुई। हम खेत खलिहान में चर्चा करते धान फसल की देखभाल के बारे में कुछ बातचीत, और उसमें कई जगह पे जो टिड्डा है वो भी नुकसान करते हैं। उसमें मान लो हमारी जो हमने रुपाई कर रखी है और टॉप पर चली हुई हमारी धान की फसल है, उसमें टिड्डा आ जाए है, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान उसके अंदर पहुँचा दे है। उसके लिए हम 10 किलो मिथाइल पैराथियन 2% का ये दूड़ा है, ये 1 किलो कैसे आप हम कर सके हैं। बाकी जो भी बीमारी है और जो भी कीड़ा है उसको हम सुबह शाम घूम कर जरूर देखें, और जो अपनी फसल है उसका ये देखते रहें भाई पानी की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हमने उसकी पानी की ज़रूरत को पूरा करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ध्यान रखना आप समय का भी, खेत खलिहान जो समय है का समय है वो समाप्त होया। शाम को 6:20 पर भैया मिलेंगे सारे बण भैया ने। राम राम।

आपने सुना खेत खलिहान कार्यक्रम, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ ओनी आईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी दूसरी सफा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर, डीटीएच और न्यूज़ ओनी आईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर न्यूज़ ऑन EIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30:06 हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं के लिए दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

दैनिक कार्यक्रम युवा संसार में आप सभी श्रोताओं को महिमा का नमस्कार। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल बड़े फैसलों या फिर असाधारण प्रतिभा का परिणाम नहीं होता, बल्कि ये हमारी छोटी छोटी दैनिक आदतें होती हैं जो हमें सफलता की ओर आगे ले जाती हैं। हर रोज़ समय पर उठना, अपने कार्यों की योजना बनाना, नियमित अध्ययन करना, दूसरों का सम्मान करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और सफलता की ओर हमें ले जाती हैं। अक्सर हम बड़ी उपलब्धियों का सपना देखते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए आवश्यक आदतों को अपनाने में लापरवाही कर जाते हैं। सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए हमें आज से ही ऐसी आदतों को अपनाना चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व को और बेहतर बनाएं। छोटी आदतों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इन्हें अपनाना आसान होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो अगर कोई विद्यार्थी प्रतिदिन सिर्फ 1 घंटा भी पूरे मन से अध्ययन करता है, हर दिन कुछ नए शब्द सीखता है और अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है, तो कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास और उसका ज्ञान दोनों बढ़ते हैं। इसी प्रकार नियमित रूप से व्यायाम करना, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद लेने जैसी कुछ आदतें अगर हम अपनाते हैं तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, जिससे हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। और ये छोटे से प्रयास ही हैं जिनका निरंतर अभ्यास करके हम हमारी नींव को मजबूत बना सकते हैं। और ऐसा तो कहा गया है कि बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, लेकिन हमारा निरंतर प्रयास जो होता है, हर दिन के जो हमारे कार्य होते हैं, अगर हम उनमें सच्ची निष्ठा बनाए रखते हैं तो हम निश्चय ही अपने जो मुकाम है उस तक पहुंच जाते हैं। और अब इसी उम्मीद के साथ आइए हम बढ़ते हैं आगे। और आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन का विशेष कार्यक्रम रहता है हेलो जीनियस फोन इन कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं कुछ नियमों के साथ। आप सभी को बता देते हैं दोस्तों, 3 सवालों के सही जवाब आपको बना सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में जीनियस। यदि किसी एक प्रश्न पर हमारे

0: दो श्रोता रुक जाते हैं और उस सवाल का सही जवाब वो नहीं जानते हैं, तो सही उत्तर हम आपको बताएंगे। और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। संपर्क नंबर है हमारे 012-62-55-446, 255-447 और 255-448। पहला सवाल आप सभी के लिए है, वैश्विक शांति सूचकांक में कुल 163 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा? हेलो, वैश्विक शांति सूचकांक में कुल 163 देशों की सूची में भारत का स्थान बताएं। हेलो, एक सूचकांक जारी किया गया है दोस्तों, जिसका नाम है वैश्विक शांति सूचकांक। कुल 163 देशों का इसके अंतर्गत विश्लेषण किया गया। हेलो हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम।
0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो, सवाल आप सभी के लिए है, वैश्विक शांति सूचकांक में कुल 163 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा?
1: हेलो
0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताइए अपना।
1: जी, मैं उमेश बात कर रहा हूँ।
0: जी उमेश जी, आपने सवाल सुना है
1: जी,
0: तो इसका सही उत्तर बता दीजिए।
1: 127वां।
0: बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया है आपने। 127वां स्थान भारत ने हासिल किया है और पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर जो देश रहे हैं उनका नाम है आइसलैंड, न्यूजीलैंड और स्विट्ज़रलैंड। जुड़े रहे उमेश हमारे साथ। और अगला सवाल आपके लिए है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बना है?
1: जी, संयुक्त अरब अमीरात।
0: जी नहीं,
1: सऊदी अरब।
0: जी, ये भी सही जवाब नहीं है आपका।
1: धन्यवाद,
0: कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश आपको बताना है। हेलो, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस दोस्तों, जिसके तहत बिग कैट्स को बचाने के लिए ये एक पहल है जो भारत की ओर से शुरू की गई थी। हेलो, और एक नया देश इस अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के तहत जुड़ा है, उसका नाम आपको बताना है। और ये जो है, ये 27वां देश है। हेलो, इससे पहले हमारे साथ एक श्रोता इस प्रश्न को लेकर जुड़े थे, उमेश। और जैसे कि हमने कहा कि इस पहल के तहत कुल 7।
2: हेलो
0: हेलो
2: मैडम, नमस्कार जी, अजय बात कर रहा हूँ।
0: जी अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सवाल आपके लिए है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बना है?
2: जी मैम, ये बांग्लादेश बना है।
0: बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया है आपने, बांग्लादेश सही उत्तर है इसका। भारतीय वायुसेना ने किस देश से जैगुआर लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन सही जवाब है आपका बिल्कुल। और एक और प्रश्न है जो आपको इस कार्यक्रम का आज पहला जीनियस बना सकता है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया?
2: राजस्थान।
0: जी नहीं,
2: थैंक यू
0: जी, आपने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं इस कार्यक्रम में हमारे से जुड़े, आप शुक्रिया। तो सवाल यही लेकर हम चलते हैं अब अपने अगले श्रोता की ओर। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? हेलो
3: हेलो
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, नाम बताएं अपना।
3: जी मैं अविनाश बोल रहा हूँ, त्रिपुरा से।
0: अविनाश जी, सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं आज कि प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है?
3: जी ये असम में होता है, जो गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर में होता है अंबुबाची मेला।
0: जी जी जी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है आपने। और जुड़े रहे हमारे साथ, अगला सवाल आपके लिए है, खाद्य एवं कृषि संगठन

0: संगठन ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया है?
1: इसका जवाब नहीं आता है, अगले प्रश्न
0: जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ शुक्रिया
1: जी, धन्यवाद।
0: बीते महीने ही ये पुरस्कार दिया गया है, आपको उन भारतीय का नाम बताना है। हेलो,
2: हेलो
0: जी, आपका
2: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग जी, नाम बताएं।
2: मैं राहुल बात कर रहा हूँ, बिट्स पिलानी शहर, जिला झुंझुनू, राजस्थान से।
0: जी राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया है?
2: डॉक्टर सुमित माथुर
0: जी? नहीं, हाल ही में ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
2: ठीक है, नहीं है।
0: हमारे साथ जुड़ने के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया। तो नियमों के मुताबिक इस प्रश्न को लेकर दो साथी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं जो इसका सही जवाब नहीं दे पाए हैं। हम बताते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर है वल्लुवन। वल्लुवन को ये पुरस्कार दिया गया है उनके अमूल्य योगदान के लिए। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। और अब अगला सवाल है आप सभी के लिए। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का सोवा रामस्थर स्थल घोषित किया गया है, आप सभी जानते ही होंगे, तो आप बताइए कि ये किस राज्य में स्थित है? हेलो,
2: हेलो महिमा मैम, राहुल बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में है।
0: जी बिल्कुल सही और सटीक जवाब है, ये उत्तर प्रदेश में ये पक्षी अभयारण्य स्थित है जिसे सुरहा ताल भी कहा जाता है। और अब अगला सवाल है, रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बने हैं?
2: कौन सा ग्रैंड स्लैम, क्या बोला मैम बताना?
0: जी, रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप
3: से बात कर,
0: जो साथी हमारे साथ जुड़े उनसे शायद संपर्क यहाँ पर टूट गया है, तो प्रश्न यही रहता है। और अब अगले श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो, एक बार सवाल आप सभी के लिए फिर दोहराते हैं दोस्तों। रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बने हैं? इन्होंने एक अद्भुत आकृति रेत पर बनाई है और उसके लिए उन्हें ये जो सैंड मास्टर कप था ये उन्हें दिया गया। हेलो, हेलो,
4: हेलो
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार मैम, अजय बात कर रहा था।
0: नमस्कार अजय जी, सवाल आपके लिए है कि रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बने हैं?
4: मैम इसी टाइम जीता है शायद सुदर्शन पटनी करके।
0: जी जी जी, सही जवाब है बिल्कुल आपका, सुदर्शन पटनायक उनका नाम है और उन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की है। और अब अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग प्रदान किया गया है?
4: सारिंदा नहीं मैम, नहीं पता जी, धन्यवाद।
0: कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। GI टैग दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसे कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र के किसी पारंपरिक वस्तु को जो है ये प्रदान किया जाता है ताकि जो उसकी क्वालिटी है और को अश्योर किया जा सके, और इसके लिए ये GI टैग दिया जाता है। कुल 10 वर्षों के लिए ये टैग मिलता है किसी भी वस्तु को और उसके बाद उसे पुनः रिन्यू करवाना होता है। हेलो,
2: हेलो
0: जी,
2: गुड इवनिंग मैम, राहुल बात कर रहा हूँ।
0: स्वागत है राहुल।
2: नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मैम, त्रिपुरा।
0: त्रिपुरा बिल्कुल सही जवाब है आपका। और अब अगला सवाल है आपके लिए, फीफा विश्व कप से जो कि संपन्न हुआ अभी हाल ही में, किस देश की टीम इसमें विजेता रही?
2: ये स्पेन ने जीता है 2010 बाद में दूसरा खिताब, अर्जेंटीना को फाइनल में 1-0 से हरा
0: दिया। जी बिल्कुल सही जानकारी दी है आपने। और अब ये भी बता दीजिए कि इस कप को किन देशों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके साथ और भी कुछ देश रहे?
2: ये नहीं आता, सॉरी मैम।
0: कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो फीफा विश्व कप को किन देशों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया?

0: हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों संपर्क नंबर है हमारे 012-5544-6, 2554-47 और 2554-48। हेलो
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं।
1: जी, मैं मध्य प्रदेश सागर से विपिन बात कर रहा हूँ।
0: जी विपिन, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में। सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं कि फीफा विश्व कप को किन देशों ने संयुक्त रूप से आयोजित किया?
1: मैम, अमेरिका और मेक्सिको।
0: अमेरिका, मेक्सिको सही जवाब है। एक देश और है यहाँ पर
1: मैम, मेक्सिको के अलावा फ्रांस।
0: फ्रांस तो नहीं है।
1: तो मैम यूके।
0: यूके भी नहीं है।
1: अमेरिका, फ्रांस, मैम स्विट्जरलैंड।
0: स्विट्जरलैंड भी नहीं है ये देश।
1: चलिए तो थैंक यू मैम,
0: कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नियमों के मुताबिक हम आपको बताते हैं, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको ये तीन देश हैं जिनके द्वारा इस विश्व कप का आयोजन किया गया। और आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ हम अपने श्रोताओं को प्रोत्साहित करते हैं कि जिस तरह से वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रश्नों के सही उत्तर देने का प्रयास भी कर रहे हैं और कई सवालों के सही जवाब दे भी रहे हैं, तो दोस्तों इसी तरह से कोशिश करते रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत से जीनियस बनेंगे। और इसी उम्मीद के साथ अगला सवाल आपके लिए हम रखते हैं यहाँ पर, बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में NPA का पूर्ण रूप क्या है? NPA का। हेलो,
2: गुड इवनिंग मैम, राहुल बात कर रहा हूँ।
0: जी राहुल जी, गुड इवनिंग।
2: किसका पूर्ण रूप पूछा आपने?
0: जी NPA, जिसे बैंकिंग में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है।
2: NPA का क्या?
0: जी
2: नहीं, इसका मैम ये मतलब उससे संबंधित है, नॉन परफॉर्मेंस।
0: जी जी जी, बिल्कुल सही बताया है आपने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे कहा जाता है, गैर निष्पादित संपत्तियाँ। और अगला सवाल है आपके लिए कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
2: विश्व आर्थिक मंच का तो न्यूयॉर्क, अमेरिका।
0: जी नहीं,
2: इंडिया मैम।
0: जी आप प्रयास करें, क्योंकि ना बहुत सारे देशों के मुख्यालय यहाँ पर हैं, तो शायद आपका एक तुक्का यहाँ पर बैठ सकता है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और जुड़े रहिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए है। हाल ही में VBG रामजी योजना जो है, वो उस योजना ने किस पुरानी योजना का स्थान लिया है? VBG रामजी योजना, जिसे हम कहते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन। हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें?
3: जी उमेश बात कर रहा हूँ।
0: जी उमेश जी, सवाल सुना आपने?
3: जी, ये मनरेगा का स्थान लिया है।
0: जी मनरेगा, MG नरेगा जो योजना है उसका स्थान लिया है VBG रामजी योजना ने, सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है कि VBG रामजी योजना जो है, ये किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है? कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ शुक्रिया। VBG रामजी योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है?
2: हेलो,
0: हेलो
2: मैम, राहुल बात कर रहा हूँ।
0: जी राहुल,
2: ये ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित है।
0: जी बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। और अगला सवाल है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का क्या नाम है?
2: पहली हाइड्रोजन
0: ट्रेन का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी।
2: जी
0: नाम बताना है आपको उसका। जुड़ने के लिए हमारे साथ शुक्रिया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या है ये बताना है आपको। हेलो,
2: उमेश बात कर रहा हूँ एक बार फिर से।
0: जी उमेश जी, सवाल आपके लिए है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या है? नमो ग्रीन रेल। बिल्कुल सही और सटीक जवाब है आपका। और इसी से जुड़ा प्रश्न है, हाइड्रोजन ट्रेन में मुख्य ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जी हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाई जा रही है, इसमें ईंधन के रूप में किसका उपयोग मुख्य

0: रूप से किया जाता है।
1: हाइड्रोजन का।
0: हाइड्रोजन और एक और यहाँ पर है एलिमेंट।
1: हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
0: जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सही जवाब है आपका। और जो ये हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलाई गई है, ये किस मार्ग पर चलाई जा रही है?
1: जींद से सोनीपत।
0: जी, तीन सवाल, और आपने यहाँ तीनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। बनते हैं आप आज के इस कार्यक्रम के पहले जीनियस। आप अपना नाम बता दीजिए एक बार।
1: उमेश बात कर रहा हूँ।
0: उमेश, आपको बहुत बहुत बधाई हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए भी और इस कार्यक्रम में जीनियस बनने के लिए भी।
1: जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम के पहले जीनियस उमेश बने हैं, और अन्य साथी जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उम्मीद करते हैं वो भी प्रश्नों का सही जवाब दे पाएंगे। और इसी के साथ सवाल है आपके लिए, बीते महीने उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण रूप से साक्षर राज्य कौन सा बना है? उल्लास स्कीम के तहत साक्षर
1: हेलो,
0: राज्य कौन सा बना है? हेलो
1: गुड इवनिंग। मैम राहुल बात कर रहा हूँ।
0: जी, राहुल, गुड इवनिंग।
1: क्या पूछा आपने?
0: हाल ही में उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है?
1: आंध्र प्रदेश,
0: जी नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं है।
1: उत्तराखंड।
0: जी, उत्तराखंड इस कड़ी में छठे स्थान पर जो है वो पूर्ण रूप से साक्षर राज्य बना है। सही जवाब दिया है आपने। और इससे पहले कुछ राज्य हैं, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम।
1: जी मैम।
0: अगला सवाल है, बौद्ध ग्रंथ के मुख्य ग्रंथ को क्या कहा जाता है?
1: बौद्ध ग्रंथ है।
0: जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें जो मुख्य ग्रंथ है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया था, उसे क्या कहा जाता है?
1: समय ज्ञान वो उनसे
0: जी नहीं।
1: ठीक नहीं आता।
0: हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बौद्ध ग्रंथ का जो मुख्य ग्रंथ है उसे किस नाम से बुलाया जाता है? पाली भाषा में ये लिखा गया था। हेलो,
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं।
1: मैं राकेश बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ
0: जी, सवाल सुना आपने?
1: जी,
0: तो इसका सही जवाब बताइए कि बौद्ध ग्रंथ के मुख्य ग्रंथ को क्या कहा जाता है? जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है।
1: सॉरी मैडम।
0: कार्यक्रम में जुटने के लिए यहाँ शुक्रिया। तो बौद्ध धर्म में जो मुख्य ग्रंथ है उसे हम त्रिपिटक कहते हैं। मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया था। और अब अगला सवाल आपके लिए हम ज्योग्राफी से लेकर आए हैं। भारत और नेपाल से होकर बहने वाली एक अंतर सीमा नदी मेची किस नदी की सहायक नदी है? हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: जी, गुड इवनिंग। सवाल सुना है आपने?
1: क्या बात, तो नेपाल के बीच में आपने एक अंतर सीमा नदी, ऐसा कुछ है मैम, क्या है उसका?
0: भारत और नेपाल से होकर बहने वाली एक अंतर सीमा नदी मेची किस नदी की सहायक नदी है?
1: काली नदी। काली
0: माफ कीजिए, जवाब दोहराएं।
1: नदी की
0: जी नहीं।
1: तो कर्णाली नदी,
0: जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है।
1: शारदा नदी।
0: जी नहीं।
1: ओके नहीं आता।
0: तो सवाल यही, और अब अगले श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं आगे। भारत और नेपाल से होकर बहने वाली एक अंतर सीमा नदी मेची किस नदी की सहायक नदी है? हेलो, एक श्रोता इस प्रश्न को लेकर हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। हेलो, हेलो। भारत और नेपाल से होकर बहने वाली एक अंतर सीमा नदी मेची किस नदी की सहायक नदी है? हेलो दोस्तों, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। संपर्क नंबर हमारे हैं 01-1262-55-4446। हेलो, और 2-5-5-4-4-7 और 2-5-5-4-4-8। सवाल आपके लिए एक बार फिर दोहराते हैं। भारत और नेपाल से होकर बहने वाली एक अंतर सीमा

0: मेची किस नदी की सहायक नदी है? हेलो
1: हेलो मैम, अजय बात कर रहा हूँ। मेची नदी बड़ा पूछा ना जी, किसकी सहायक नदी है?
0: जी, अजय जी, मेची नदी के बारे में
1: जी
0: पूछा है।
1: मैम, ये महानंदा नदी है, उसकी सहायक नदी है जी।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका यहाँ पर। और अगला सवाल है आपके लिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी?
1: कुचिपुड़ी मैम, आंध्र प्रदेश।
0: आंध्र प्रदेश, सही जवाब। और अगला सवाल इतिहास से है, 18वीं शताब्दी में सिराज उद्दौला, मीर जफर और मीर कासिम ने भारत के किस राज्य पर शासन किया था?
1: मैम एक आपने कौन कौन से बताया जी? मीर जाफर,
0: जी, 18वीं शताब्दी में मीर जफर और मीर कासिम और सिराज उद्दौला ने भारत के किस राज्य पर शासन किया था? बंगाल,
1: मैम बंगाल।
0: बिल्कुल सही जवाब है आपका यहाँ। और 3 सवाल सही जवाब बनते हैं, आप आज के इस कार्यक्रम के जीनियस। अजय, आपको बहुत बहुत बधाई हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: और
1: मैं 2014
0: जीनियस।
1: से कार्यक्रम सुन रहा हूँ जी, बहुत बहुत
0: अरे अरे
1: धन्यवाद।
0: अरे, यहाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतने लंबे समय से जुड़े रहने के लिए भी। और आज के इस कार्यक्रम में हमें 2 जीनियस यहाँ मिले हैं, और लेकिन अभी हमारे पास और वक्त है, और हम आपसे प्रश्न अगला पूछते हैं। भारतीय मुख्य भूमि में दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन
1: हेलो,
0: सा द्वीप समूह स्थित
1: गुड
0: है?
1: इवनिंग मैम, राहुल बात कर रहा हूँ।
0: जी राहुल, सवाल सुना है आपने,
1: लक्षद्वीप,
0: जवाब दोहराएं।
1: लक्षद्वीप
0: जी नहीं,
1: आपने दक्षिण क्या पूछा है? दक्षिण
0: दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है?
1: पूर्व, तमिलनाडु के पास, पुडुचेरी,
0: जी नहीं।
1: तो अंडमान निकोबार द्वीप
0: जी,
1: समूह।
0: अंडमान निकोबार है ये, और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट भी इसी द्वीप समूह
1: हाँ, ये
0: पर है।
1: दक्षिण पॉइंट है मैं भारत का।
0: जी, और अगला सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है?
1: अनुच्छेद समान, सॉरी, अनुच्छेद 128।
0: जी नहीं, 128 नहीं है, आसपास भी नहीं है 128।
1: अनुच्छेद 14 ठीक
0: जी नहीं,
1: है, नहीं आता, सॉरी मैम।
0: कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है?
2: हेलो,
0: हेलो,
2: नमस्ते मैडम
0: नमस्कार जी, सवाल सुना आपने।
2: जी। मैडम सतीश बोल रहा हूँ,
0: जी सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: एक सौ
0: सवाल है
2: तिरसठ द्वारा
0: जी, 163 तो सही जवाब नहीं है।
2: तो मैडम 189।
0: जी, 189 भी सही उत्तर नहीं है आपका।
2: तो मैडम अगले प्रश्न करता हूँ।
0: कोई बात नहीं, हमारे साथ आप यहाँ जुड़े हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नियमों के मुताबिक 2 साथी यहाँ इस प्रश्न को लेकर जुड़े हैं, तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों आर्टिकल 39D के तहत जो है समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाता है। और अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्न और उत्तर का ये जो सिलसिला है इसको यहीं पर ही संपन्न करते हैं। और आज के जो इस कार्यक्रम में जीनियस बने हमारे श्रोता अजय और उमेश, उन्हें हम एक बार फिर से बधाई देते हैं। और अन्य श्रोता जो भी हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, जिन्होंने प्रश्नों के सही जवाब देने के प्रयास किए, और उन्हें भी हम प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी से ही जो है ये कार्यक्रम जो है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाता है और आपको पसंद भी आता है। और अब इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं हम सांप्रदायिक सद्भावना के मूल्यों के बारे में। सांप्रदायिक सद्भावना दोस्तों हमें सिखाती है कि किसी व्यक्ति के मूल्य उसके धर्म, जाति या भाषा से नहीं बल्कि उसके गुणों से तय होते हैं। और जब समाज में हम सभी धर्मों के सभी गुणों की बराबरी से इज्जत करते हैं तो हम सभी के अंदर भाईचारे की भावना विकसित होती है और समाज में शांति, सुरक्षा और सामाजिक समरसता का वातावरण निर्मित हो पाता है। और अब इसी उम्मीद के साथ आइए इस कार्यक्रम को यहीं पर अब हम संपन्न करते हैं। दीजिएगा इजाज़त अपने रेडियो साथी महिमा को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे युवा संसार कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है। 6 बजने को है। अब हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश

0: को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.4 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा में पहले जान लीजिए आज के शेष कार्यक्रम। संसद समीक्षा आप सुन पाएंगे आज रात 8 बजे। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

साप्ताहिक समीक्षा 6:30 पर आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले की जाएगी। 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश आर्या से बातचीत का विषय होगा पशुओं को संतुलित आहार। 7:00 ग्रामीण संसार में सुनिएगा चौपाल फोन इन कार्यक्रम। सुगम संगीत में रात्रि 8:25 पर आज लेकर आएंगे ए हरिहरण की गाई कुछ गजलें। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम होगा रात्रि 10:00 और 10:30 आप सुन पाएंगे मनचाहे गीत कार्यक्रम, जो कि रहेगा आप श्रोताओं के खतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

0: आज के शेष कार्यक्रम आपने जाने और अब आपको बता दें कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संसद समीक्षा सुनिएगा कल रात्रि 8 बजे, प्रश्नकाल कल रात्रि 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। विविधा कार्यक्रम में प्रातः 7:15 पर श्री विनोद कुमार अहलावत से वार्ता का विषय होगा पोक्सो एक्ट के तहत सभी कानून पक्ष। 7:25 पर सुबह सवेरे कार्यक्रम प्रसारित होगा। युवा संसार में शाम 5:30 युवा साथी सुनेंगे कुछ विषयों पर जानकारी और इसके अलावा फिल्म संगीत। NCERT प्रायोजित कार्यक्रम लेकर आएंगे 12:30 पर। कृषि जगत में शाम 6:20 पर डॉक्टर अनिल कुमार से बातचीत का विषय होगा बरसात के मौसम में कृषि यंत्रों की देखभाल। 7 बजे ग्रामीण संसार में डॉक्टर सत्यवान से बातचीत सुनिएगा बरसात के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल। खेत खलिहान में 2:30 पर चर्चा होगी गन्ना फसल में कीट नियंत्रण। सुगम संगीत में रात्रि 8:25 पर कलाकार होंगे अदनान सामी और आशा भोसले। फिल्म संगीत प्रातः 9 बजे आप सुन पाएंगे और इसके अलावा शाम 7:30 चित्रपट संगीत 1:10 पर। फिल्म संगीत रात्रि एक फिल्म से कार्यक्रम रात्रि 9:15 पर। इसमें सुनिए आंचल फिल्म से कुछ गीत। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 6:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले होंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल 0 करने का भी है।

0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: पर दीप,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकेस्ती से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नरवाना उपमंडल के गांव उझाना के विकास के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए देने और स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू करवाने की घोषणा की। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कुसली कुरुक्षेत्र में लगभग 5.19 करोड़ रुपए की विभिन्न जनहितकारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल और परसों बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर और अधिक प्रभावी रोक लगाना और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को और मजबूत बनाना है। आज पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सहयोग और विधेयक पर सार्थक चर्चा की अपील की, किंतु हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब सदन फिर से शुरू हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक पर चर्चा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक महत्वपूर्ण कदम है।
5: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
4: उन्होंने कहा कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, सभी दलों को अपनी राय रखनी चाहिए। अध्यक्ष की बार बार अपील के बावजूद विपक्ष के सदस्य विरोध करते रहे, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शाम तक स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
6: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
4: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नरवाना उपमंडल के गांव उझाना के विकास के लिए 1.51 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री आज गांव उझाना में श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ श्री महाराज जी के नवनिर्मित समाधि स्थल पर आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग के अनुरूप गांव में सड़क निर्माण, कुंड तालाब का जीर्णोद्वार, पानी निकासी का स्थायी समाधान तथा गांव के स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू करवाने की घोषणा की।
7: मेरे से कुछ मांगे यहाँ कही गई है, उनको पूरा कराने का काम करेंगे। जाना की फिरनी से रोमदी माइनर तक सड़क का निर्माण मार्केट कमेटी के माध्यम से कराया जाएगा। जितना भी पैसा लगेगा इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। अमृत सरोवर योजना के तहत कुंड तालाब का जीर्णोद्धार पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से करवाया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर भी उजाना गाँव में बनेगा। इसके लिए मैं 1 करोड़ रुपया उजाना गाँव को दे करके जाता हूँ। अगर इसके ऊपर और कोई खर्च करने

0: आवश्यकता हुई तो हम और खर्च भी करेंगे।
1: इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महापुरुषों का जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। उनके आदर्श मानवता, सेवा, समरसता और राष्ट्र निर्माण का संदेश देते हैं। वर्तमान पीढ़ी को उनके जीवन मूल्यों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। उन्होंने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिठा और विभिन्न मठों के महंत मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल शहर के कुसलीपुर क्षेत्र में लगभग 5,19,00,000 रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली विभिन्न जनहितकारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। खेल राज्य मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र में सड़क एवं नाली निर्माण, बीपीएल कॉलोनी के आसपास आधारभूत सुविधाओं का विकास, विभिन्न गलियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा।
2: 5.5 करोड़ की लागत से सड़कें, द्वार का निर्माण हो रहा है। कल भी हमने करोड़ों रुपए के उद्घाटन किया। हमने तय किया है कि पलवल के अंदर एक भी दिन कंस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं। किसी न किसी रूप में कहीं रोड बनते हुए दिखाई देंगे, कहीं हॉस्पिटल्स, कहीं चौक चौराहे, कहीं खेल स्टेडियम। हम पलवल की विकास की गति को और तेज कर रहे हैं।
1: हरियाणा विधानसभा सचिवालय में आज केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी पहल भाषिणी के उपयोग एवं AI आधारित इंटरप्रिटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, अनुवाद तकनीकों पर एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रकाशन, अनुवाद तथा नेवा शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भाषिणी प्लेटफॉर्म की विभिन्न सेवाओं तथा उनके व्यावहारिक उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में क्षमता संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्यशाला उसी निरंतर प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप उभरती हुई डिजिटल एवं तकनीकी नवाचारों को अपनाना समय की आवश्यकता है। मौसम विभाग की चंडीगढ़ केंद्र ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल और परसों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट और आज व 30 जुलाई से 2 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा और चंडीगढ़ में कल और परसों ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 30 से 31 तारीख तक कई जगहों पर और आज और कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार हरियाणा में आज से 2 अगस्त के बीच कुछ जगहों पर भारी और भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी तूफान चलने, बिजली गिरने व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को OPD, IPD, CM, प्रसूति रोग, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सहित अनेक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा मरीजों को 24 घंटे सातों दिन लेबर रूम की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। केंद्र की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि अस्पताल को अब मॉडल अस्पताल के रूप में भी चयनित किया गया है। अमेरिका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका सैन्य अभियान रोक देता है तो वह आगे और हमले नहीं करेगा। इसके बाद कीमतों में यह गिरावट आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला छावनी स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का नाम बदलकर आचार्य रघुवीर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। आचार्य रघुवीर एक प्रख्यात शिक्षाविद, भाषाविद, संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति के महान विद्वान तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के महान शिक्षाविदों एवं राष्ट्र निर्माण के योगदान को सम्मान देने की दिशा में यह निर्णय लेते हुए वर्तमान नीति में आवश्यक छूट देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। विपक्ष के हंगामे

0: कमी के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नरवाना उपमंडल के गांव उझाना के विकास के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए देने और स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू करवाने की घोषणा की। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कुसली कुरुक्षेत्र में लगभग 5.19 करोड़ रुपए की विभिन्न जनहितकारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: मीडियम वेव 262.47 मीटर पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

दिल्ली की दलाली के माँ पेट रहता खाली रह भाई कोई कैसा ई छोरे न सर पर धरती ठाली रह बल्ले लत्ते पैरू तमने काढ़े चीर के जावे सह खाना पीना घर में को

भैया ने ये सुनी रागनी करण सिंह भटगामिया और उनके साथियों की गाई हुई। भैया देखो, जहाँ तक हम बात करें मौसम की, तो मौसम बदलाव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और हमारा जो सारा का सारा काम है वो जब चल रहा है, जब बरसात हो ले, और उसमें भी देखो हमारा, चाहे हम पशुधन की बात करें, चाहे

हरी वाली फसलों की करें चाहे सब्जी फसलों की करें, हर चीज़ को बरसात की ज़रूरत है। और बरसात में भी अपना इस बात का ध्यान रखें कि भाई जो अपना और अपना पशुधन का स्वास्थ्य है उसको ठीक रखना है। पहले आज भाइयों साप्ताहिक समीक्षा जागी और उसके बाद फिर भैया ने सुनवाओगे एक बातचीत है।

महिनावारी समाचार समीक्षा। प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका सुकीर्ति। नमस्कार। पिछले 12 वर्षों के दौरान इस देश में शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कोई प्रयास न किया गया हो। जल शक्ति अभियान कैच द रेन एक ऐसा ही अभियान है जो भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह अभियान धरातल पर जन आंदोलन का रूप ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जहां वर्षा हो जब वर्षा हो वर्षा जल को संचित करें विषय के साथ किया था। यह अभियान वर्ष 2019 में प्रारंभ जल शक्ति अभियान की उल्लेखनीय सफलता पर आधारित है। इसके अंतर्गत जन आंदोलन की भावना के साथ वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल ग्रहण के क्षेत्र विकास, जल निकायों के पुनर्जीवन तथा वृक्षारोपण को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया गया। तब से यह अभियान प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वर्षा की प्रत्येक बूंद बचाने तथा जल संरक्षण अभियान को पूरे देश में लगातार गति देने का आह्वान किया है। इसकी प्रतिक्रिया में 4 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक देश भर में एक केंद्रित राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य वर्षा जल को जमा करना, भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक जल स्रोतों को पहले जैसा करने, वृक्षारोपण गतिविधियों तथा जन भागीदारी को सशक्त बनाना है। इस अभियान के दौरान सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक घर, सोसाइटी एवं कार्यालय वर्षा जल संचयन प्रणाली को अपनाएं। अभियान के तहत उपयुक्त स्थानों पर रिचार्ज पिट एवं रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण तथा अनुपयोगी बोरवेलों की मरम्मत कर उन्हें भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग में लाने और बावड़ियों, कुओं तथा पारंपरिक जल स्रोतों को बहाल कर उन्हें पुनः उपयोग योग्य बनाने का काम हो रहा है। आसपास के तालाबों एवं जलाशयों से गाद हटाकर उनकी जल धारण क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि मानसून के जल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। देश भर में 31 मई 2026 तक कम से कम 1 करोड़ भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि 1.5 करोड़ से अधिक संरचनाओं के निर्माण की सूचना प्राप्त हुई है जो निर्धारित लक्ष्य से 50% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से मन की बात करते हुए भी कैच द रेन अभियान पर जोर दिया। इसमें शामिल होने वाले लोगों की सराहना की और सभी देशवासियों से बारिश के पानी के बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज बारिश की बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। इस अभियान को लेकर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा भी जल संचयन में कई योजनाओं को लागू कर चुका है। हरियाणा में इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान के 6वें संस्करण की आधिकारिक शुरुआत 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस के अवसर पर हरियाणा के पंचकुला जिले से की गई थी। हरियाणा जल संसाधन संरक्षण विनियमन और प्रबंधन प्राधिकरण जल और सतही जल के संरक्षण, नियमन और उचित प्रबंधन के लिए काम करता है। हरियाणा सरकार का मानना है कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आज हम पानी बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। जलवायु परिवर्तन और भूजल स्तर में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए वर्षा जल संचयन को जन आंदोलन

0: का रूप देना आवश्यक है। राज्य सरकार ने हाल ही में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। नए भवनों, सोसाइटियों, बड़े औद्योगिक संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। सिस्टम खराब होने पर भवन मालिक को नोटिस जारी किया जाता है। समय पर सुधार नहीं होने पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है। हरियाणा के 14 जिलों में भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। राज्य के कई ब्लॉक तथा गांव ऐसे हैं जो रेड जोन में आ चुके हैं। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में कुल 19,290 तालाबों का डेटाबेस तैयार किया गया है, जिनमें से अब तक 6,777 से अधिक तालाबों व जोहड़ों की सफाई और पुनर्जीवन का कार्य पूरा किया जा चुका है। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से शेष सभी प्रदूषित और अनुपयोगी तालाबों का चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने राज्य के तालाबों और जोहड़ों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है तो अभी से पानी की बचत और संरक्षण की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। वर्तमान में किए गए संयुक्त प्रयास ही भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। इसी के साथ ही समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: कृषि जगत कार्यक्रम में भाइयों का फिर स्वागत है और ईब सुनेंगे एक पूर्व प्रसारित बातचीत औषधीय पौधों की काश्त के बारे में। तो भाई सुने ये बातचीत, डॉक्टर राजेश आर्या जी आए थे, तो सुने ये बातचीत।
2: भाई आज बातचीत करेंगे औषधीय पौधों की काश्त के बारे में और इस सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश आर्या जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, औषधीय पादप विभाग है जो चोपना चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। डॉक्टर साहब स्वागत आपका स्टूडियो में।
3: नमस्कार किसान भाइयों, हरियाणा के अंदर औषधीय पौधों की खेती के लिए बहुत ही अच्छी जलवायु और भूमि उपलब्ध है, साथ में पानी भी है।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह के परंपरागत खेती करते आ रहे हैं किसान भाई,
3: हाँ जी,
2: कुछ थोड़ा सा रुझान भाइयों ने बना, किसी ने पोली हाउस का भी है, कुछ अपने सहायक धंधा में बड़े और कुछ अपना जिस तरह सब्जी फसल हमारी सब्जी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मांग होगी। पहले डॉक्टर साहब कहता कि 12 महीना फूस और नाज, तीसरी जरूरत नहीं हुआ करती। किसी ने गाँव का मीन जाना होता है ना तो अपना बस का चादरा मांग लिया, आपस में जूती उधारी ले ली, लेकिन सारी तो फसल है हमारी वो ऐसी होगी, व्यापारिक होगी। पहले अपन डांगर डोर का भी घर का दूध खातर कराया करते, अब सारा व्यापारिक हो गया। और डॉक्टर साहब इस समय ऐसा आ गया, फिलहाल हम देखा कि कपास फसल है,
3: हाँ जी
2: भाई, अपना कितने पानी चढ़ गया या फिर वाइट फ्लाई का लगा लो, इसी तरह मतलब बहुत सारी हमारी परंपरागत खेती है जो खराब होगी कुछ जलवायु के कारण, कुछ हमने अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक वगैरह डाले, छिड़काव करे। तो ये जो विषय है किसान भाइयों के लिए नया थोड़ा सा, ये औषधीय जो पौधे हैं, तो डॉक्टर साहब इसके लिए पहले तो आपने बताया कि पानी और मिट्टी किसी चाहिए इसके लिए।
3: देखो जी, हरियाणा की जो जलवायु है, मिट्टी है, औषधीय पौधों के लिए उपयुक्त है
2: जी।
3: साथ में दिल्ली का लगता हुआ बाजार है और हरियाणा के किसान पढ़े लिखे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए हरियाणा सबसे उपयुक्त जगह है औषधीय पौधों की खेती के लिए
2: जी।
3: और अब जो समय, जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में हम अश्वगंधा है, सतावर है, गिलोय है, एलोवेरा है, इन प्रकार के पौधों की खेती शुरू कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधों के लिए अलग अलग वातावरण की आवश्यकता है
2: जी।
3: तो सबसे पहले हम बात करते हैं अश्वगंधा की
2: जी।
3: अश्वगंधा की इंटरनेशनल मार्केट में कोविड के बाद में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है
2: जी।
3: और जो इसकी जड़ें हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो इसकी खेती के लिए वैसे तो हरियाणा का पूरा ही इन्वायरमेंट उपयुक्त है,
2: इसके लिए बढ़िया है,
3: हाँ जी, पर रेतीली दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है
2: जी।
3: क्योंकि जड़ें हैं उनका विकास रेतीली दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से होगा
2: जी। डॉक्टर साहब इसकी कितनी हाइट जा है, अश्वगंधा की बात करें,
3: इसकी जो हाइट है वो आपकी ज़्यादा नहीं जाती, जब अपने गेहूं की फसल के बराबर ही इसकी हाइट रहती
2: इतनी
3: है, हाँ इतनी रहती है, 100 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर के।
2: रुक साहब इसमें आप जमीन में लगा सकते हैं, प्लांट वगैरह अलग से कोई?
3: देखो ये तो हमें खेत में लगाना चाहिए,
2: खेत में लगाना
3: वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या फिर घर में छोटी सी कोई क्यारी बना के उसमें लगा सकते हैं,
2: जमीन में
3: ही ज़्यादा अच्छा रहेगा।
2: तो डॉक्टर साहब इसके आपने बताया जो औषधीय गुण है, इम्यूनिटी पावर है, और इसके क्या औषधीय गुण है?
3: इसके अलावा भी इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, जिसमें कि कमर में दर्द है, कुल्ले में दर्द है, या मतलब कि कहीं लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, या मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, या दिमाग संबंधी कोई समस्या है, तो इन सब समस्याओं के

0: यानी कि मल्टीपर्पज़ यूज,
1: यानी
0: आयुर्वेद
1: कि
0: में सबसे
1: जी
0: इम्पोर्टेंट प्लांट है।
1: डॉक्टर साहब, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि भी पेन किलर
0: हाँ जी, हाँ
1: है
0: जी,
1: ना, भी दर्द निवारक भी है और साथ में इसमें एंटीबायोटिक है, यानी कि भाई कोई कीटाणु है, कोई अंदर रोगाणु है, उन्हें
0: हाँ
1: भी ख़त्म करा है, इसलिए इसके औषधीय गुण हैं। डॉक्टर साहब, इसकी बाजार भाव की भी बात करेंगे बाद में,
0: हाँ जी।
1: अश्वगंधा के बाद में अपने कौन से इसे जो है भाई लगा सकते हैं?
0: अश्वगंधा देखो जी, अभी सितंबर में लगा के मार्च में ख़त्म हो जाता है, मतलब कि 6-7 महीने की फसल है।
1: जी
0: उसके बाद में आगे आप और भी फसल लगा सकते हो, जैसे कि एलोवेरा लगाना चाहो या कोई और जो भी फसल लगाना चाहो वो लगा सकते हो,
1: डॉक्टर साहब,
0: चौड़ाई लगा
1: इसमें
0: सकते
1: जिस तरह आपने बताया अश्वगंधा में,
0: हो। हाँ
1: इसकी
0: जी,
1: जड़ा का आपने बताया,
0: हाँ जड़ा का जब से
1: छाल भी इसकी काम आती होगी या फिर इसके
0: नहीं,
1: कोई
0: इसके पत्ते भी काम आते हैं वैसे,
1: फूल वगैरह
0: परंतु
1: जो सब
0: जो
1: कुछ
0: मुख्य है, जो उपयोग है वो जड़ का है। जड़
1: जड़ का
0: में
1: है
0: जो दवाई की मात्रा ज़्यादा होती है, पत्तों में कम होती है।
1: जी।
0: जड़ें यदि आप इसकी 300 के भाव बिकती हैं तो पत्ते 50 रुपये किलो के भाव बिकेंगे,
1: हाँ,
0: इतना
1: मतलब कोई
0: अंतर
1: भी
0: रहता
1: वेस्टेज
0: है।
1: नहीं है
0: हाँ,
1: इसका
0: वेस्टेज नहीं है।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो बताया आपने जो है स्थावर का, अश्वगंधा का।
0: अश्वगंधा का
1: इसके बाद हम बात करें कि भाई दूसरे जो हमारे औषधि हैं जो भाई अपना आराम से लगा सके हैं, और कौन से ऐसे पौधे हैं?
0: और जैसे कि एलोवेरा है, एलोवेरा में बीज नहीं होता, पौधे के साथ में जो फुटाव लिए हुए पौधे होते हैं उन्हें को हम पौधे के रूप में उपयोग करते हैं। तो पौधे के साथ में पौधे उगते रहते हैं, वो जब 3-4 पत्ती का जब पौधा हो जाए तो उसको वहाँ से उखाड़ के
1: दूसरी जगह
0: अपने
1: लगा
0: दूसरी
1: सकते हैं
0: जगह खेत में लगा सकते
1: डॉक्टर
0: हैं।
1: साहब। जो एलोवेरा है इसमें ये है कि भाई सीधा जो एलोवेरा है
0: हाँ जी,
1: भाई, एक तो कि भाई के कर रहे हैं कुछ अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं खुद
0: हाँ
1: के,
0: जी,
1: है ना, कई चीज़ों में जो औषधीय गुण इसमें बहुत सारे हैं, एलर्जी में है, और इसके अलावा जो देसी भाषा हम ग्वार पट्टा भी इन्हें कहते हैं,
0: हाँ जी,
1: है ना भाई, कोई बा है, कोई बादी है, सर्दियों में विशेष कर सांध के जिस तरह गूंद की तरह
0: हाँ जी,
1: लड्डू
0: हाँ, पेन किलर का काम
1: है
0: करता है
1: ना,
0: ये भी।
1: वो
0: हाँ
1: भी
0: जी,
1: बना ले मीठा वगैरह डाल के। तो इसका मतलब जो प्रशिक्षण है इसके बारे में पूरी, भाई हमने खेती कर ली, लगा दिया
0: हाँ जी,
1: सीधा, एक तो बेचें, एक उसका कुछ भाई लड्डू बना के बेचें, या
0: हाँ
1: फिर
0: जी।
1: उसने कोई तेल के रूप में, मसाज के रूप में, इसका किस तरह से?
0: देखो जी, यदि थोड़े रूप में लगाते हो तो आप इसको मतलब कि पत्ते के रूप में भी बेच सकते हो, बट यदि मास स्केल पर यदि कुछ किसान मिलकर लगाते हैं तो एक जेल प्रोसेसिंग यूनिट होती है
1: जी
0: जिससे इसके पत्तों से जेल निकाल के पैक करके आप भारतीय बाजार में या विदेशी बाजार में कहीं भी बेच सकते हो, वो और भी अच्छा है। इसके अलावा जो आप बता रहे लड्डू वगैरह बना के भी बेचा जा सकता है। इसके अलावा साबुन, शैम्पू या सकीन, मतलब कि जो अपनी त्वचा रोग संबंधी जितनी भी
1: जी
0: जो दवाइयाँ बनती हैं, जितनी भी क्रीम बनते हैं, साबुन शैम्पू, उनमें भी इसका उपयोग है। कोई भाई साबुन बनाने की, शैम्पू बनाने की फैक्ट्री लगा ले साथ में तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से किसान का मुनाफा बढ़ सकता है।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें भाई जिस तरह अपना बात करें कि भाई एक औषधीय जो गुण
0: हाँ जी,
1: वैरायटी की अगर बात आ जाए, भाई कोई इसमें वैरायटी भी है कोई बढ़िया अच्छी किस्म ऐसी हो जिसका बाजार भाव भी अच्छा मिले भाई, ना नाम तभी के।
0: हाँ जी, देखो अच्छी पैदावार के लिए एलोवेरा बारबेडेंस नाम की जो किस्म है, जो स्पीसीज है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी है और वो ही प्रचलन में है।
1: अच्छा,
0: और जो किसान लगाना चाहे तो इसार यूनिवर्सिटी से उसके पौधे ले सकता है, वहाँ पर
1: ले सकते
0: पौधे भी
1: हैं
0: उपलब्ध हैं।
1: जी। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर बात आओ औषधीय पौधे में, फिर किसका नंबर आओ?
0: इसके अलावा फिर सतावर है जी,
1: स्थावर।
0: हाँ जी, ये लेडीजों के लिए कायाकल्प औषधि के नाम से जानी जाती है। जैसे सतावर है तो इसकी भी जड़ काम आती है।
1: और डॉक्टर साहब, इसका पौधा कितनी हाइट का, स्थावर का?
0: इसका पौधा बेलनुमा होता है, उसको यदि सहारा दे दिया जाए बांस डंडे का तो ये ऊपर चल पड़ता है, और कांटेदार बेल सी होती है जिसमें कोई पशु का किसी प्रकार का इसमें भी कोई नुकसान
1: तो
0: नहीं है।
1: इसकी भी जो जड़ है वो उपयोग में
0: हाँ,
1: ज़्यादा
0: जड़ें
1: हम,
0: ही उपयोग में रहती, ऊपर का भाग किसी काम का नहीं है इसका।
1: तो डॉक्टर साहब इसने किस मौसम में लगाऊं और कितने दिन की
0: हाँ,
1: फसल है ये?
0: इसको बीज से तैयार करते हैं, पहले तो प्योद, प्योद लगाने के लिए मई जून का महीना होता है, फिर लगभग 45-50 दिन के ऊपर जब इसके पौधे तैयार हो जाएं तो पौधे के नीचे दो फिंगर नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं। तो वो
1: यानी
0: बनने के बाद,
1: एक फुटाव सा कह सकें
0: हाँ, मतलब उसकी जड़ें हैं, मोटी हो जाती हैं
1: जी।
0: और उसमें कुछ खुराक जमा हो जाती है। उसके बाद उसको हम 45-50 दिन पे पाड़ के अपने खेत में, यानी
1: लगा
0: कि
1: सके
0: 90-90 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा लेते हैं। और फिर जब वो और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बिलान दो बिलान का, तब उसको बांस का सहारा दे देते हैं। और ये लगभग 1.5 साल से 2 साल की फसल है।
1: अच्छा, इसकी अवधि
0: हाँ
1: भी
0: जी,
1: लंबी है कि
0: इसकी
1: बार
0: अवधि
1: बार
0: लंबी
1: भैया
0: है।
1: ना,
0: हाँ
1: मतलब
0: जी,
1: जो है इसमें
0: और जैसे हम आलू को मिट्टी चढ़ाते हैं
1: जी
0: इस तरह से, इसको भी साइड से मिट्टी चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो ताकि जमीन में ही रहती हैं,
1: ढकी रहे और
0: ढकी
1: वो
0: रहे।
1: मजबूत हो जाए।
0: हाँ,
1: तो डॉक्टर साहब, इसकी भी जो मार्केटिंग वगैरह तो मेरे ख्याल से सारी आपने बताया, दिल्ली का है
0: हाँ जी,
1: या
0: दिल्ली के
1: फिर भाई कोई
0: आसपास।
1: औषधीय कोई संस्थान है जब

0: से जो उसके पौधे हैं भाई लगा सकते
1: इसके
0: हैं।
1: बाद में हमारे पास एक गिलोय है।
0: गिलोय बेल,
1: हाँ जी गिलोय, गिलो
0: देसी भाषा में खूब भाई से परिचित
1: हाँ जी,
0: हैं,
1: अमृता के नाम से
0: है ना।
1: जानते हैं इसे।
0: बुखार की कोई समस्या है,
1: हाँ जी
0: टाइफाइड की कोई दिक्कत है, हमेशा उबाल के, और अच्छा एक आयुर्वेद में गिलोय बेल का नाम
1: हाँ जी, क्योंकि जैसे प्लेटलेट कम हो जाती है कई बारी, तो कोई भी दवाई आप लो अंग्रेजी, उससे जल्दी सी बढ़ती नहीं है। गिलोय का आप थोड़ा थोड़ा कर डाले हो तो उससे 2 बार में ही लेने से आपकी प्लेटलेट बढ़ना चालू हो जाती है। डेंगू में जो समस्या आती है ना, उसके लिए रामबाण औषधि है।
0: तो डॉक्टर, इसकी जो बेल हैं, जो
1: हाँ जी
0: छोटी अवस्था में पौधे लगाने हैं, बीज की अवस्था में लाने हैं, या फिर भाई किस तरह से लगाऊं?
1: गिलोय तो कटिंग से ही लग जाती है,
0: कटिंग
1: वैसे
0: से।
1: बीज से भी पौधे तैयार होते हैं पर कटिंग से भी लग जाते हैं। तो जैसे कि मैं तो किसानों को ये सलाह दूंगा कि आप जैसे कि जो बाड़ है आपके खेत की, उसके ऊपर आप लगा दीजिए, ताकि आपकी बाड़ भी मजबूत हो जाएगी और एक तरह से आपका गिलोय का प्रोडक्शन भी
0: या
1: होने
0: फिर कोई
1: लगेगा।
0: सी जगह है जो अपना भाई थोड़ी सी कम इस्तेमाल में हो, जिस तरह आपने बाड़ की बताई,
1: हाँ जी हाँ
0: कोई
1: जी
0: अपना भाई कोई सी भी जगह है, कोई खांड
1: हाँ,
0: है
1: कोई
0: तो।
1: पेड़ है, जैसे किसी ने सहजन लगा रखा है, नीम लगा रखा है। वैसे तो आयुर्वेद में ना नीम गिलोय का ज़्यादा महत्व बताया गया है, कहते हैं कि
0: अच्छा,
1: उसमें नीम के भी फिर गुण आ जाते हैं, तो उसकी गुणवत्ता बढ़
0: अगर
1: जाती है।
0: नीम के पास
1: हाँ नीम के पास
0: है ना
1: लगाएंगे। हाँ जी,
0: जी, तो इसके लिए डॉक्टर साहब कोई वैरायटी की बात आओ है, या
1: इसके
0: गिलोय
1: गिलोय
0: देसी है अपना, कोई भी
1: तो अपने देसी है, जिसकी कोई किस्म
0: कोई
1: अभी
0: वो नहीं,
1: उपलब्ध नहीं है।
0: और इसकी जो बिक्री है वो जड़ांग रूप
1: हाँ
0: में या पूरी बेल
1: नहीं,
0: कर?
1: इसकी पूरी बेल को काट के इसके पत्तों का ज़्यादा से उपयोग नहीं है। जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं, तो पत्ते झड़ने के बाद में जो इसकी बेल बचती है
0: जो
1: उसको,
0: रस्सी सी बच गई,
1: हाँ जो रस्सी सी बच गई उसको काट के टुकड़े कर लो और उसको सुखा के मंडी में बेच
0: और
1: सकते
0: इसका
1: हैं।
0: कितने दिन का समय डॉक्टर साहब, जब बम बेल को
1: इसका
0: तैयार करें
1: वैसे जो बेल है ये लगभग 3 साल के बाद में काटी जाए तो उसकी औषधीय गुणवत्ता अच्छी
0: ज़्यादा
1: रहती
0: होती
1: है।
0: है?
1: हाँ जी,
0: अच्छा,
1: कम से कम 3 साल तक उसको आप चलने दें बेल को, उसके बाद में उसको काट के मार्केट में बेचें।
0: जी।
1: तो गिलोय बट्टी के नाम से आजकल इसकी बहुत सारी गोलियां मार्केट में उपलब्ध हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर का ही काम करता है, तो शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो तो उसको ठीक करने में सहायक है।
0: जी, और रुक सब गिलोय के बाद में हम बात करा कि वे तुलसी की, अगर
1: हाँ जी
0: तो घर घर में वैसे भी अपने एक धार्मिक आस्था के रूप में भी
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: शुद्धता के रूप में भाई तुलसी लगाओ है, तो इसका अगर इस स्तर पर औषधीय स्तर पर देखा तो इसमें के गुणों हैं, और इसकी खेती किस तरह करी जाए रुक सब?
1: देखो, तुलसी तो भारतीय संस्कृति का एक तरह से मूल है। हर घर
0: बिल
1: में पुराने
0: बिल्कुल
1: जमाने में हम घर में लगाते थे तुलसी, और परंपरा चली आ रही है। और तुलसी की भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, कम से कम 5 किस्म की वैरायटी तो मेरे पास ही उपलब्ध है। रामा, श्यामा, कपूर तुलसी, नींबू तुलसी और बिमला तुलसी, तो ये इस प्रकार के अलग अलग तुलसी हैं। तो हर एक का अपने अपने गुण हैं, परंतु कुछ गुण ऐसे कॉमन हैं कि जैसे कि खांसी जुकाम होता था पहले, या हम चाय बनाते थे या कोई और काढ़ा बनाते थे, तो उसमें 3-4 पत्ते लिए और तोड़ के उसमें डाल लिए, तो वो खुशबू भी देता था, इम्यूनिटी बढ़ाता था। और इसके अलावा जो तुलसी का जो खास गुण है, वो घर के वातावरण को आपको बहुत ही अच्छा खुशनुमा वातावरण प्रदान करती है,
0: जी
1: और इसमें और पौधों के मुकाबले ऑक्सीजन अधिक छोड़ने की क्षमता है। तो घर के वातावरण में जब ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी तो आप और भी ज़्यादा स्फूर्तिदायक रहते हैं।
0: तो रक्षा, ये तो आगे ना अपने देसी भाषा में कहा, अगर का मामला कर्म का कर्म और धर्म का धर्म,
1: हाँ जी
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: जी बिल्कुल
0: उसमें अपना एक आय का भी साधन भी है। तो रक्षा बड़े स्तर पर अगर करा, खेत की
1: हाँ,
0: अगर बात,
1: बड़े स्तर पर खेत में भी इसको लगाया जा सकता है। और अपने हिसार के पास एक गांव है नंगथड़ा,
0: जी
1: उसमें लगभग 150 किसानों ने 200 एकड़ में तुलसी का मतलब पिछले ही साल से शुरू किया है, और वो इंटरनेशनल मार्केट में उसका बीज और पत्ते बेच रहे हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जिस तरह घर में लगा रखी
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: अपने गमला में लगा रखी है,
1: हाँ
0: जमीन
1: जी
0: में लगा रखी है, तो उसका तो ये बेरा भी पानी डालना और अपना प्रणाम करना है,
1: हाँ जी हाँ
0: लेकिन
1: जी
0: अगर खेत की बात आ जाए तो इसमें बीज से, बीज का
1: हाँ
0: या
1: जी देखो,
0: पत्ता का, मतलब किस तरह से इसका जो
1: पहले तो नर्सरी में आपको पौधे तैयार करने पड़ेंगे। पौधे तैयार करने के लिए आपको नर्सरी बेड बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर बीज इसका बहुत बारीक होता है। 1 एकड़ की नर्सरी तैयार करने के लिए 200-300 ग्राम बीज काफ़ी रहता है, तो उससे
0: अच्छा,
1: आपको डाल दो, बहुत बारीक बीज होता है,
0: हाँ बिल्कुल
1: तो
0: डॉक्टर
1: उसको
0: साहब,
1: आप डाल दो। डालने के बाद में अपने पास वर्मी कंपोस्ट या केंचुए की खाद जो होती है, उसमें हल्की सी मिट्टी मिला के उसके ऊपर से डाल दो, और फिर उसको में पानी देते हो, लगातार गिली रखो जब तक कि
0: जी
1: वो पौधे उगना चालू ना हो जाए। जब ये उग जाएँ, और जब 4-5 पत्ती का जब पौधा आपका हो जाए, उसके बाद आप खेत में उसको लगा सकते हो।
0: तो इसमें
1: खेत
0: डॉक्टर
1: में पौधे से
0: साहब,
1: पौधे की
0: हाँ
1: दूरी
0: हाँ
1: 30 सेंटीमीटर रख लो, और प्लांट से प्लांट की दूरी 20 सेंटीमीटर के आसपास रखो।
0: जी, तो डॉक्टर साहब इसमें आपने बताया कि भाई इसमें पत्ता के रूप में भी, और कितना टाइम उसमें रखना पड़ा खेत में, फिर जब मरे

0: मार्केट खातर तैयार होगी?
1: देखो उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। यदि आपने कटाई लेके पत्ते बेचने हैं या पत्तों से तेल निकाल के बेचना है या बीज लेना है, इसमें मतलब कि दोनों तीनों प्रकार से आप इसको बेच सकते हो। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसे कि पौधा आपने आज प्योद लगाया तो 50 दिन के बाद में यदि आपने पत्तों की कटिंग लेनी है तो आप कटिंग ले लो और उससे तेल निकाल के मार्केट में बेच सकते हो।
0: इसमें पत्ते जिस तरह पौधा है हमारा,
1: हाँ जी
0: भाई पत्ते चूट लें,
1: नहीं नहीं पूरा का पूरा
0: पौधा है इसमें,
1: नीचे से चार अंगल छोड़ के जमीन से ऊपर का पौधा काट लो, 50 दिन के बाद में दोबारा फुटाव ले आएगा
0: जी,
1: फिर अगले 50 दिन में फिर दोबारा काट के, तो इस तरह से दो तीन कटिंग आप इसकी साल में ले सकते हो। और आखिरी कटिंग के बाद में इसको छोड़ दो ताकि आगे फिर बीज बनने दो
0: जी,
1: फिर
0: जी।
1: वो बीज भी आप मार्केट में बेच सकते हो। तो तुलसी को कई प्रकार से इसका उपयोग है। और यदि आपके पास में तेल निकालने की मशीन नहीं है, डिस्टिलेशन यूनिट नहीं है, तो आप पत्तों को आप छाया में सुखाओ और सुखाने के बाद पत्ते बेच दो, क्योंकि जितनी भी साबुन शैम्पू बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो इसका उपयोग करती
0: या फिर कुछ अपना देसी चाय भाई बनाओ,
1: हाँ देसी चाय जैसे लेमन टी वगैरह उसमें भी तुलसी को डालते हैं,
0: उसमें डाल देते हैं। और वैसे तो अपना आम तौर पे इसका जो पाउडर है,
1: हाँ जी
0: है ना, वो भी पीस के
1: हाँ रख सकते हैं,
0: है ना, किसी भी रूप में। इसमें तो सब इसी तरह का पौधा है और अपना घर घर में देखा जाए मरुआ,
1: हाँ जी मरुआ भी है, वो भी एक तरह तुलसी का भाई है,
0: तुलसी का भाई कैसे, बिल्कुल वो अपनों उसी तरह फूल से आओ हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो उसके लिए भी जो खेती है
1: वो भी बिल्कुल जैसे तुलसी की काश्त करते हैं बिल्कुल वैसा ही उसका,
0: वो आपने 30 सेंटीमीटर का पौधे से पौधा फासले इसमें रखना है, और वो है जो आपने बताया 3-4 पत्ते जो बोझ है तो उसमें लगा सके हैं, उसी तरह से जो उसके पत्तियां का और वो आपने बताया भी।
1: और मरवे का एक सबसे अच्छा उपयोग है, जैसे कि पुराने जमाने में जैसे मतलब कि बच्चों के पेट में जब वो जून वगैरह कीड़े वगैरह जब हो जाया करते हैं, तो मरवे की चटनी बनाओ और उसके साथ में रोटी खाओ, दो दिन रोटी खा लो आपका पेट एकदम बढ़िया हो जाएगा।
0: एक चीज और भी थी मरवा का रस में, नाक में फुंसी होगी,
1: हाँ हाँ उसके लिए भी
0: ना था, उसमें भी डाला करते और सुगंध भरा है बहुत अच्छा,
1: अच्छा।
0: तो डॉक्टर साहब इसके अलावा ये तो हमने बेरा जाने माने हैं, कुछ इसे भी हैं जो बड़े वृक्षों के रूप में हो जाए औषधीय जिसमें
1: आजकल आपने नाम सुना होगा सहजन,
0: बिल्कुल
1: ड्रम स्टिक के नाम से भी जानते हैं जिसको,
0: सहजनी
1: मोरिंगा के नाम से
0: सहजना भी कहते हैं,
1: सहजना भी कह देते हैं। तो इसका प्रचार बहुत बढ़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करता है, और इसके पत्ते भी फूल भी छाल भी और बीज भी और फलियां भी सब चीज़ें काम में आती हैं, चाहे किसी भी स्टेज का हो हर प्रकार से इसका उपयोग रहता है
0: जी।
1: तो मैं किसानों को कहूँगा कि जो मेड है आपकी उसमें लगा लो, या जो जैसे बीच बीच में जहाँ जहाँ आप महसूस करो भाई ये खाली जगह हैं उपयोग में कम है, मतलब कि किसान की जो रद्दी से रद्दी जमीन है जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सहजना की खेती आसानी से करी।
0: अब अपने खेत का वो कूड़ा है,
1: हाँ
0: आमतौर पर हम देखा भाई ट्रैक्टर की जुताई में बाई में उसमें रोनी पहुँच पर
1: हाँ
0: तरह की जो है कोई कमरा खेत में झूठी बना रखी है
1: उसके आसपास
0: उसका अगर लगा लें, को खांडा का आसपास बाई लगा लें, तो डॉक्टर साहब इसमें जो सहजना है इसके जो पौधे हैं मेरे ख्याल से आंगनबाड़ी वगैरह में भी थोड़ा बहुत देखने में मिला कि सहजना के पौधे आ रहे हैं।
1: हाँ जी देखो इसका ना सरकार ने मतलब कि बढ़ावा देने के लिए जगह जगह मतलब कि सरकार नर्सरी के लिए भी प्रोत्साहन दे रही है किसानों को भी आप नर्सरी लगाओ पौधे तैयार करो और बेचो,
0: स्कूलों में पहुंचा दिए,
1: स्कूलों में पहुंचा दिए,
0: आंगनबाड़ी
1: में पहुंचा दिए,
0: इस तरह से
1: हेल्थ सेंटर में कॉलेज में, तो ये प्रचार चल रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी ने भी पौधे तैयार कर रखे हैं, कोई किसान भाई लेना चाहिए तो हम वहाँ से भी पौधे देते हैं किसानों को
0: जी। तो सब इसके बाद बात आओ है बहुत सारा जिक्र चला अर्जुन की छाल का,
1: हाँ जी अर्जुन की छाल
0: है ना,
1: अच्छा उपयोग
0: बहुत जो है अपने देसी वैद भी लिखे हैं जो आयुर्वेद में है, तो इसका किस तरह से पौधा मिले और किस तरह से इसकी बाई लगा सकें?
1: हाँ जी अर्जुन का पौधा जी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमारे पास हर्बल वाटिका में उपलब्ध है, जो कोई किसान भाई लेना चाहे लगाना चाहे लगा सकते हैं। और वैसे भी मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने ये मोरनी हिल्स का जो एरिया है इसमें बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, और ये जो अपना ये जो जो रोड वाला जो विभाग है इन्होंने रोड के किनारे भी ये पौधे लगा रखे हैं, पर सब लोगों को पहचान नहीं है। इसके जो पत्ते हैं वो अमरूद से मिलते जुलते हैं
0: बिल्कुल,
1: और ये मतलब कि हरियाणा में खूब लगा हुआ है और खूब चलता है, और जो इसकी जो छाल है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग है, जैसे कि अपन अपनी गाड़ी वगैरह की सर्विस नहीं कराते हैं तो इस प्रकार से इसकी छाल की यदि हम चाय बना के पिए तो हमारे जो ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको एकदम क्लीन कर देता है।
0: डॉक्टर साहब देखो समय के साथ परिवर्तनशील है,
1: हाँ जी
0: उनका अगर दिन बोला भाई धन का कारण बल घट जाएगा,
1: हाँ जी
0: पैसा ज्यादा आ गया इन चीजों से लोग टूट गए, खेत में पेट में दर्द हो जाता है, एक मरेलन का पौधा होया करता
1: हाँ, मरेलन भी
0: है ना, तो उसमें कांटे हुआ करे जरूर लेन दे, तो अब गड़ुम्बा अपना
1: गड़ुम्बा भी होता था
0: ना, खूब गड़ुम्बा मेरे ख्याल से

0: पड़ोस देश गुना है,
1: ये चीजें जो बने राम बाण उस दिन,
0: हाँ ये चीजें लोग सब गणी समय के साथ भाई उन्हें भूल गए, पुराना टाइम देखा ना किसी के बीपी का यंत्र था, ना को शुगर की दवाई देनी था, सारा स्वस्थ था, इन चीजों पर निर्भर था
1: बिल्कुल।
0: तो लोग सब और कौन सी खेती सी है उस जो भाई अपना आराम से भाई जो पौधे अपना चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सर में अपना बताए वो भी उपलब्ध हो।
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ, और कौन से इसे
1: तो इसके पास बाद में हमारे पास में लेमन ग्रास के नाम से जिसको ग्रीन टी के नाम से जाना जाता है,
0: ग्रीन टी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मदीना के पास में एक किसान है उसने 10 एकड़ में लगा रखी है और उसका भी तेल निकाल के ना इंटरनेशनल मार्केट में या राष्ट्रीय मार्केट में आसानी से बेचा जाता है और उससे भी ये जो स्किन संबंधी जो समस्याएं हैं इनसे मतलब कि जो संबंधित दवाइयां हैं वो बनाई जाती हैं।
0: सब ग्रीन टी ये करे हो ना, एक तो रस आपने बताया
1: हाँ
0: कुछ भाई चाय के रूप में भी,
1: हाँ चाय के रूप में भी
0: उपयोग उबाल के ना विशेषकर सर्दी में देखा है।
1: घरेलू उपयोग करना है तो आप एक गमले में उसको लगा दीजिए, उसके पत्ते तोड़ के जो आम जो चाय पीते हैं उसकी बजाय उसके पत्ते तोड़ के उसका जो काढ़ा सा अर्क निकाल के आप वो सुबह शाम लें तो वो भी
0: जी। तो सब ये कौन सा गांव बताया अच्छा, आपने जो किसान भाई हैं
1: मदीना के पास,
0: मदीना के पास में तो बड़े स्तर का उनका,
1: हाँ बड़े स्तर का उनका काम है। इसके अलावा यमुनानगर में भी एक किसान ने लगा रखी, उसने लगभग 50 एकड़ में लेमन ग्रास लगा रखी है और इन्होंने साथ में डिस्टिलेशन यूनिट भी लगा रखी है ताकि उसका तेल निकाल के वो आगे भी
0: जो यंत्र है मशीन वगैरह है वो सारा सब कुछ कर रहे हैं। और इसके अलावा डॉक्टर साहब कौन से औषधीय पौधे हैं जी कराओ तो?
1: इसके अलावा जैसे कि हमारे पास में एक बेलगिरी का पौधा होता है जिसका कि स्क्वैश मिलता है गर्मी के लिए, वो मतलब जब किसी आदमी को गर्मी ज्यादा दिक्कत करे तो उसका मतलब कि जूस निकाल
0: हाँ, खूब अपना ग्रामीण अंचल में भी बाजार में भी हाँ बेलगरी का जूस, बेलगरी का जूस सस्ता ही मिल जाए बल्कि हाँ। अच्छा बहुत स्वाद भी हो है, इसका सुगंध भी अच्छी हो है।
1: तो पेट संबंधी रोगों के लिए, दिमाग संबंधी गर्मी के लिए, तो इन संबंधी चीज़ों के लिए सबसे कारगर औषधि।
0: तो डॉक्टर साहब आपने सारे जितने बताए औषधि गुण और भी बहुत सारे से हैं कि भाई बाईस के लिए जो जानकारी है या फिर प्रशिक्षण है वो आपने किस तरह से हासिल करें एक बजे और बता।
1: प्रशिक्षण के लिए वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में संपर्क कर सकते हैं, पंचकुला मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वहाँ संपर्क कर सकते हैं और ये जो हमारी MHU है करनाल में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ संपर्क कर सकते हैं और एक हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट है करनाल में HTI के नाम से वहाँ।
0: और डॉक्टर साहब इसके लिए कुछ अनुदान भी है भाई सरकार की तरफ से अगर भाई कुछ जिस तरह अनुदान में रस गार्डन का है?
1: हाँ जी, औषधीय पौधों के लिए जो सरकार है वो यदि कोई नर्सरी तैयार करता है तो उसके लिए अनुदान है, खेती करता है तो खेती में अश्वगंधा है, एलोवेरा, इन प्रकार के कुछ 8-10 पौधे हैं जिन पे किसान
0: या फिर प्रोडक्ट अपना बनाओ तो
1: हाँ
0: उसके
1: जी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए भी किसान को अनुदान की उपलब्धता है और बेचने के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं हरियाणा जो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है उसकी तरफ से। तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, हर स्टेप के ऊपर सरकार उनके साथ खड़ी है और पूरी मदद।
0: तो डॉक्टर साहब इसमें तो शुरू से लेकर आखिरी तक निपटारा भी इसका अच्छा है
1: हाँ जी।
0: और कुछ ज्यादा इसमें नो भी कौन छोटे स्तर पर बाई कर सकें और कुछ इसे बताए कि अपना खाली जगह में भाई वो छोटे मोटे जो पौधे हैं अपने वो लगा सकें
1: हाँ।
0: इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर राजेश आर्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो भैया ने ये तो सुनी बातचीत है और भैया देखो जो हम भाई इन बातों का ध्यान करें और जो हमारी खेती है उसमें यदि जो मसाले वाली खेती हैं या जैसे औषधीय बात बताई डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छी बात बताई, इन पर ध्यान करेंगे तो हम जो अपना मुनाफा है वो अच्छा कमा सके हैं और कम अक्षेत्र की यदि हमारे पास जोत है तो फिर भी हम उससे बहुत अच्छा मुनाफा ले सके हैं क्योंकि इनके जो भाव हैं वो हमने बहुत बढ़िया मिले हैं। और भाई देखो एक बात ये भी करें भाई, अब बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जो अपना पशुधन है, जैसे ही बरसात भी होगी सारे काम होंगे तो उसके बाद जो अपना पशुधन है उसको भी हम ठीक ठाक रखें और उनका जो बचाव करना है, उनकी देखभाल करनी है, उनका जो बिछावन रखना है, ये सारी की सारा जो हमारा प्रबंधन है वो होना चाहिए। और जहाँ तक बात करें भाई जो पशुधन है, मक्खी है, मच्छर है, वो भी समय पर ज़्यादा हो जाए हैं तो उनको भी, उनसे भी हमने अपना जो पशुधन है उसको बचाना है। भाई ये तो था कृषि जगत कार्यक्रम और ईब कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार। और ग्रामीण संसार में भाइयों हम बात करें कि भाई आज सोमवार है और सोमवार के दिन जो फोन इन कार्यक्रम है वो रव है, उसमें जो हमारे श्रोता भाई हैं वो अपना फ़ोन करें और अपना जो सुझाव है कार्यक्रम

0: आत्म संबंधी बहुत अच्छा और कम शब्दों में करें, क्योंकि लंबे समय तक यदि आप बात करोगे तो जो हमारे दूसरे श्रोता हैं वो फ़ोन करने से रह जाए हैं, उनके फ़ोन नहीं मिल पाते, इसलिए कम शब्दों में हमने बात करनी है और जो कार्यक्रम है उनके संबंध में उसमें बताना है। भाइयों को सबसे पहले फ़ोन बता दें, भाई अपनी तीन लाइन है वो काम कर रहे हैं, उसमें 012-62 रोहतक का एसटीडी कोड है, 255-446, 255-447, 255-448, ये तीन फ़ोन लाइन काम करेंगी। इस पर अपना फ़ोन करें और जो अपना कार्यक्रम संबंधी जो सुझाव है वो ज़रूर दें। तो भाई फ़ोन लेना शुरू करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: सुरेंद्र भाई, राम राम।
0: राम राम जी, राम राम
1: जी। मैं बादल सिंह गिल, गांव पांडू, पिंडारा, जिला जींद।
0: जी जी जी जी।
1: पुनिया साहब, पिछली बार जब आप प्रोग्राम पेश कर रहे थे,
0: हाँ जी,
1: तो ट्रांसमीटर पे आवाज बहुत खराब आ रही थी।
0: हाँ।
1: बहुत कट सट का आवाज आ रही थी
0: जी,
1: आवाज समझ में नहीं आ रही
0: थी,
1: और कल भी ऐसा ही था।
0: अच्छा,
1: कल दिन में जब आपके अनुरोध पेश कर रही थी रचना मैडम, तब भी ऐसा ही था
0: जी।
1: मोबाइल से सुनता हूँ मैं, आवाज बिल्कुल कट कट कट कट के आ रही थी
0: जी,
1: यानी के सही बात तब तक हुई नहीं है
0: जी जी। यानी कि आपका कहने का ये मतलब है कि भाई जो सुधार हुआ है वो पूरा सुधार नहीं हुआ है?
1: नहीं, अभी सुधार है, लग नहीं रहा।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो इसमें
1: सुधार की गुंजाइश है बहुत ज्यादा
0: जी। तो चलो इस
1: दूसरा, आप जो गढ़वा बैंजू की रागड़ी सुनाते हैं
0: जी,
1: ये बहुत बेसुरी रागड़ी होती है। इसमें गाया कितने होके ना तो कोई समझ मानता, ये तो उसके शब्द बोल रहे हैं, वो हल्ला हुआ हुआ कर दे रहे हैं, ना उनको कोई अर्थ होता। तो इन रागड़ियों पर आप नियंत्रण करो, स्टॉप लगाओ, और जो पक्के साज की रागड़ी है वो सुनवाओ तो अच्छी बात है।
0: नहीं, मान लो जो स्पष्ट आवाज में, ये तो कच्चा साज और पक्का साज दोनों चलेंगे साहब।
1: नहीं, स्पष्ट आवाज में होती नहीं है, हुआ ज्यादा रहे।
0: नहीं, कौन सी में लगे आपको?
1: गढ़वा बैंजू की तकरीबन लगती है, तकरीबन
0: जो अब रागनी सुनी आपने, दिन में सुनी, उनमें किस में आपने ये लगा कि भाई मतलब जो घूं घूं है ये हुआ है?
1: नहीं, सहमत नहीं कह सकते, बाबर नहीं होती।
0: हाँ।
1: अधिकतर जो बात है ना,
0: हाँ,
1: वो गढ़वा बैंजू वाली पे और में नहीं
0: है। हाँ, वो कुछ रागनिया में है, अगर उसी में साजंदे बोल पड़े हैं, उसी में वो गायक बोल रहे हैं, और उसमें साथ में जैसे गढ़वा की और बिंजू की आवाज हो जाए है, तो उसमें कई शब्द उड़ जाए, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि हर रागनी अस्पष्ट है।
1: नहीं, मैं ये पहले कह रहा हूँ, हर रागनी नहीं, अधिकतर जो होना वो ऐसी है।
0: चलो, इसको जो सुनवाओगे ना, वो ध्यान करके थोड़ा पहले सुन के, और जब आपको सुनवाओगे ये ध्यान रखना,
1: उनका कोई अर्थ भी तो नहीं होता।
0: बिल्कुल
1: सुना हो बिना हुए हो,
0: ये बिल्कुल सही बात आपकी, और कोशिश करेंगे इसकी।
1: ठीक,
0: हाँ जी बोलिए।
1: हरियाणवी फिल्मों की फिर कम कर दिया आप लोगों ने
0: ना, ये तो देखो, ये तो आगे सामने गए भी हरियाणवी फिल्मों में भी हैं, और सावन जैसे ही लगेगा उसमें थोड़ा और ख्यास करेंगे भाई, हरियाणवी फिल्मों के गीत।
1: आपका अभियान बहुत तेज चल पड़ा था, लेकिन ये फिर कमजोर हो रही है बात।
0: नहीं नहीं, कमजोर नहीं होने देंगे, इसी तरह चलेंगे,
1: और ध्यान दो तो अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल देंगे।
1: ठीक है,
0: ठीक है, धन्यवाद गिल साहब। हेलो,
2: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, नाम बताओ जी।
2: सतीश कुमार बोल रहा था सर।
0: हाँ जी, सतीश कहाँ से?
2: बपोड़ा गांव से।
0: हाँ जी बोलिए।
2: कल सांग सुना जी, बढ़िया लग गया।
0: हाँ,
2: बात तो ये है सर, लोकसभा और राज्यसभा बगैर काम चलेगा नहीं।
0: हेलो हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी
2: जो,
0: हाँ जी बोलिए। हेलो जी, राम राम, नाम बताओ पहले अपना।
2: बलवान बोल रहा हूँ, खजवाड़ी की।
0: जी बलवान जी,
2: प्रोग्राम सारे ठीक है, वो भी बढ़िया लग गया।
0: अच्छा,
2: एक ये ग्रामीण संसार में ये आवा है ना,
0: क्या
2: अपना खेती बाड़ी आराम है?
0: हाँ बोलो, क्या आवा है?
2: ये
0: विज्ञापन है,
2: विज्ञापन तो मंडी है, वो डट दिए कौन?

0: नहीं
1: छोड़ना
0: देखो
1: ये
0: देखो,
1: रोकना कर लो।
0: ये चीज बलवान जी चलने वाली हैं और पीछे से प्रसारित हो, इनको रोका नहीं जा सकता और ये जरूरी चीज है। नहीं चल,
1: ये
0: चलो
1: कौन
0: चलो,
1: सी
0: आपका जो कार्यक्रम संबंधी है उस संबंधी बात करो, ये तो जो पीछे के प्रोग्राम है उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना ये कह सकते हैं हम इन रुकू आवाएंगे इनकी
1: अरे
0: तो।
1: वो
0: हाँ
1: पिछला हफ्ता शनिवार में शब्द नहीं आए थे,
0: हाँ
1: वो उसके जान लगे थे, वो मैं आपको बात मैं सुना
0: नहीं,
1: लिया सुना
0: दयानंद
1: लिया
0: के जो
1: आप।
0: शब्द हैं ना बलवान जी,
1: हाँ जी
0: उनकी स्पेशल सिफारिश भी आवे है। मान लो आपको तो सही नहीं उसके है, कोई आपका सेट में दिक्कत हो या और कोई कारण हो, लेकिन दयानंद जी के जो शब्द हैं वो तो उनकी सिफारिश भी आवे, सुनवाया आया करो है।
1: जी राम निवास से सुना लिया इसके साफ आवे हैं।
0: नहीं राम निवास जी के, चलो अच्छी बात है, उनके होंगे तो उनके भी
1: हाँ
0: सुनवा देंगे, वो कोई बात दिख भाई हमने उनसे वो कोई दिक्कत है।
1: एक पक्ष नाटक आ जाओ उसे शनिवार में
0: नाटक का नाम बता दो फिर सुनवा देंगे।
1: ना सुनवा के देखो, सुनवाने का ना जाओ
0: अच्छा
1: जो
0: अच्छा वो
1: उन
0: तो गलत था फिर, उसको तो एक बार बीच में आया था कि भाई उसमें कुछ गलत बात थी, तो उसको हमने कह गए हटवा दिया है।
1: हाँ ठीक करे ना।
0: हाँ और कोई आपका सुझाव हो, सांग संबंधी हो,
1: हाँ
0: कोई कार्यक्रम
1: वो
0: संबंधी
1: ठीक
0: हो,
1: ठीक चाल
0: और
1: रहे खड़ा भी बढ़िया था।
0: कोई हम जानकारी जैसे कोई डॉक्टर साहब से अब जो जानकारी जो दी भाई औषधीय पौधों के बारे में दी, या पहले भी हर सप्ताह चलती रहे, सारे सप्ताह में चलती रहे कृषि जगत में,
1: हाँ
0: तो उसमें कोई कमी हो तो वो बताओ, या हमारे जो साथी हैं जो कार्यक्रम दे हुए हैं उसमें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस आप कर रहे हो।
1: ना उनमें कोई कमी नहीं है, आप ठीक बोल रहे हैं।
0: चलो कोशिश करते हैं और
1: विज्ञापन
0: चलो ही चलो।
1: के आपको ये दावा
0: हाँ ये तो
1: चाहिए
0: बिल्कुल आओगे जी, इसमें नहीं रोक सकते हम। चलो
1: हाँ तो
0: ठीक
1: मत
0: है,
1: ले रहे हैं
0: चलो
1: डटते।
0: ठीक है, धन्यवाद जी। हेलो हेलो जी
1: सुरेंद्र भाई जी राम
0: जी
1: राम,
0: जी राम राम, नाम बताइए
1: जयवीर प्रजापत बोल रहे गाँव संगत।
0: जी। जी जयवीर जी,
1: और भाई साहब ठीक ठाक
0: बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ बरसात हुई है
1: भाई साहब करवा दो ना, बिल्कुल
0: भाई, हम
1: भूत
0: तक
1: भी को नहीं आया तो।
0: सुबह उठते आकाश का नहीं देखा, हमने तो तारे दिखे हैं, नहीं सोचा बादल पाओगे।
1: भाई साहब बहुत छाता है तो
0: कोई
1: करना काम हो
0: नहीं,
1: जाएगा।
0: देखो आस तो परमात्मा पर रखनी ही पड़ेगी है।
1: बताओ बताओ भाई साहब,
0: देख
1: तड़का तो पड़
0: देखो
1: चुका है
0: शायद कल
1: ऑलरेडी।
0: से कुछ बरसात के आसार तो हैं, जब हो जाए तो है। हाँ और कार्यक्रम के बारे में बताओ।
1: नंबर के तार रहता है सफल नंबर के नर्सिंग सांग हुआ बहुत बढ़िया लग रहा भाई, सही
0: अच्छा
1: बहुत बढ़िया सांग था। अरे
0: चलो, और
1: भाई साहब तो गड़वा बन के बंद ना कर दियो, कदे काम खाए ना कच्चे खड़ा हो या काम।
0: चलो कोई नहीं, ऐसा है गड़वा बिंजू भी नहीं बंद हुए और कच्चे साज की भी बंद नहीं हुए, ये तो मिल के चल लिया करें।
1: हाँ बिल्कुल सही भाई, एक बात बताओ भाई साहब,
0: हाँ जी
1: जो
0: बोलो। हाँ
1: आपने भी जो तनसिंह का मठिया ये जो आज मैं बात नहीं सुनाई, ये तो एक जनाले तो बात दूसरी, एक से शब्द रख लेता है शब्द
0: नहीं वो बात
1: रहता है समझो।
0: नहीं,
1: हाँ
0: वो उनका गिल साहब का फोन आया था ना, उनको बता दिया जी, जो क्लियर ही रागनी है ना, वो तो देखो पक्का साज हो चाहे कच्चा साज हो वो सुनवानी पड़ेंगी सारी, तो कच्चे साज की भी जो पक्का साज है सारी तो उसकी भी स्पष्ट नहीं है।
1: कौन है जी ना
0: हाँ
1: सारी पक्की बिल्कुल
0: ये तो गाय, ये तो गाने वाले पे होता है कई बार, क्या है कि हो जाए साज में उसमें दिक्कत आ जाए तो वो बन जाए, तो कोशिश
1: अच्छा भाई
0: करते हैं हम
1: साहब।
0: साफ सुथरी रागनी सुनवाने की, सुनकर दिया करेंगे प्रोग्राम
1: सुरेंद्र भाई एक बात और
0: जी।
1: सुनियो,
0: बताओ जल्दी बताओ देख।
1: या मतलब बात भी यार या तेरा भाई
0: हाँ
1: यार किसी की आवाज में शिकायत खत्म होगी तो यार आगने जी भाई साहब करवाओ ना किसी को रिकॉर्ड है।
0: नहीं फिर वो तो राजकिशन जी की आवाज में थी, तो वो तो परमात्मा
1: कौन है
0: प्यारे
1: जी
0: हो लिए उनकी, तो क्या कही जा सके।
1: हाँ
0: और
1: अपना रिकॉर्ड तो थी यार,
0: हाँ
1: वो तो बम खराब हो गई बताओ था संपूर्ण
0: क्या
1: भाई
0: क्या क्या बोल हैं उसके। हाँ
1: बाप या लिया तेरा भाई बात की बहुत तो बढ़िया राग ने जी भाई साहब, यार किसी को रिकॉर्ड करवा लो भाई साहब
0: चलो कोशिश
1: बहुत बढ़िया
0: करते,
1: राग ने।
0: लिख ये लिख लिए, इसको जरूर सुझाव देंगे। चलो
1: हाँ
0: ठीक है जयवीर जी, ठीक
1: ठीक है भाई साहब राम राम है
0: धन्यवाद जी। हेलो
1: राम राम।
0: हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो सुरेंद्र भाई जी को नमस्कार
0: जी, नमस्कार, नाम बताओ।
1: जी, गांव वहाँ बहुत महेंद्रगढ़ से प्रकाश अम्बाव बोल रहा हूँ सर,
0: प्रकाश जी कैसे हो?
1: बहुत बढ़िया है सर एकदम बढ़िया है।

0: जी कुछ बरसात हुई है।
1: हाँ बरसात साफ तो की होगी थी, 3-4 दिन तक घर बंद है।
0: अच्छा वह कुछ बुआरा गमी।
1: वो तगड़ा बादरे मारे तो फोटा आ रहे हैं। हाँ
0: अच्छा
1: आगे थे
0: चलो
1: बादरे।
0: बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो जितने फोन आए हैं ज़्यादातर की तो ये है भाई बरसात नहीं हो रही और
1: हमारे
0: आपने।
1: को काफी बारिश होगी सर, 2 बार तगड़ी बारिश होगी। जी
0: चल चलो जहाँ हो जाए वहीं बढ़िया है। तो कार्यक्रम संबंधी बताओ।
1: हाँ सर बताएंगे। जैसे अभी श्रोता भाई बता रहे थे कि गड़वे बैंजो की रागनी बंद हो ये चालू हो जावा, तो ये बात सर कल श्रोता मंच भाई मैंने सुनी थी, श्रोता मंच वे ये पक्के साज की रागनी चली जाओ, गड़वा बैंजो बिल्कुल बंद कर दो, इनमें फोड़ता है, ये शब्द बोले हैं इन्होंने।
0: चल
1: फोड़ता शब्द कभी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा फोड़ता कैसे है बताओ इनमें।
0: नहीं देखो ये जो गायक होते हैं ना
1: हाँ
0: कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ पक्के साज पे गा सकते हैं, रागनी वही हैं,
1: हाँ रागनी तो बोल तो वही है सर।
0: रागनी बोल वही हैं, सिर्फ कच्चा और पक्का गा, यानी कि कोई गड़वा बिंजू पर गा रहा है उसको, कोई ढोलकी पर गा रहा है
1: हाँ
0: तो फर्क
1: बिल्कुल
0: सिर्फ इस चीज़ का है। उसमें फूटता वाली तो खैर ऐसी बात नहीं है, बस ये जो गड़वा बिंजू की रागनी है फूट रागनी है ऐसी बात तो है नहीं। वो तो मैंने फिर उनको बता भी दिया कि भाई जो स्पष्ट रागनी है साफ साफ जो आवाज़ की है कोशिश हम करेंगे।
1: हाँ बिल्कुल बढ़िया सर। गढ़वा बंजू देखो पूरे अपने पूरे देश में गढ़वा बंजू खाली हरियाणा में चलता है,
0: नहीं बिल्कुल चला है, और जैसे हरियाणा है इसमें यूपी में भी
1: थोड़ा
0: चलता है।
1: थोड़ी पश्चिमी यूपी लगा लो बस।
0: हाँ तो उसमें
1: हाँ
0: है
1: बाकी तो चलता ही नहीं है, ये
0: देखो,
1: तो
0: ये
1: मेन
0: तो
1: बिल्कुल।
0: प्रकाश जी ये नहीं है कि भाई गढ़वा बिंजू की बंद हो जाएंगी और जो ढोलक वाली हैं वो ही वो रहेंगी, और ये भी नहीं है कि भाई ढोलक वाली बंद हो जाएंगी सिर्फ ये रहेंगी। देखो ये तो मिलकर चलेंगी, साफ सुथरी बात कोशिश करते हैं हम यहाँ से सुनवाने की, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि भाई हम अच्छा जो हमारे श्रोता भाई हैं उनका अच्छा मनोरंजन कराऊँ, उसमें चाहे वो कच्चे साज की है चाहे पक्के साज की है, और मिलके ही कोई भी चीज़ है। देखो एक चीज़ से तो आदमी ऊब जाता है, तो उसको हम कोशिश ये करेंगे कि भाई कच्चा साज की भी और पक्के साज की भी हो।
1: जी। नहीं सर
0: तो
1: देखो वैसे बोलने का तरीका हो सर है कि
0: चलो चलो
1: पक्के
0: कोई
1: साथ
0: नहीं, ऐसा है
1: एकदम
0: प्रकाश जी
1: कम
0: आप
1: माने फोड़ था बोले यूज किया था श्रोता भाई ने, बहुत फोड़ रागनी है ये, फोड़ का
0: नहीं
1: मतलब
0: फोड़
1: से
0: नहीं, चलो
1: मतलब
0: उन्होंने कहा था अस्पष्ट है कुछ इस तरह की।
1: कल श्रोता मंच की बात कर रहा हूँ सर,
0: चलो
1: श्रोता मंच
0: वो होगा
1: में
0: श्रोता मंच की बातें, श्रोता मंच में प्रकाश जी हमारी लाइन पे काफी आदमी होते हैं, कोई सुझाव दो आपने देना है तो।
1: जी।
0: चल ठीक है धन्यवाद जी। हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नाम बताइए।
1: सुरेंद्र भाई, राम राम।
0: राम राम जी नाम बताओ।
1: मुन्ना बोला था, गांधी वाला तुलसीदास जी
0: हाँ
1: का।
0: मुन्ना भाई बताओ जल्दी बताओ, क्या आप सुझाव देना चाहते हैं।
1: कल सॉन्ग सुनवाया बहुत बढ़िया लग गया था नार सिंह का,
0: जी बहुत बढ़िया बात।
1: और एक बाघ सुनवाया था अपना नर्मदमयंती का, 15 दिन पहले 2 बाघ था वो,
0: एक
1: नर्मदमयंती का एक बाघ और
0: एक
1: सुनवाओ।
0: बकाया रह रहा है वो जरूर सुनवावांगे।
1: हाँ दूसरी बात बल्लभी शास्त्री दयानंद के लोक संगीत में शब्द सुने और रागनी सुनी वह बढ़िया लगी।
0: अच्छा
1: एक सांग सगड़ वह का बिगे सोरठ का,
0: बीजा सोरठ का।
1: हाँ
0: हाँ
1: अरताप सिंह सोमती का,
0: हाँ
1: ये 2 सांगड़ वह बंजू पर है, रणबीर सनिया की और सीता चौधरी की आवाज में, एक दिन ये सुनवा दियो।
0: अच्छा चलो नोट कर लिया आपका सुझाव, अधिकारियां तो जरूर पहुंच जाएगी ये बात।
1: अरे एक सुधा और था, आप अगर अमल करो तो
0: हाँ बताओ।
1: ये श्रोता मंच कार्यक्रम है, एक तो आए हफ्ते कर दो और एक इसका टाइम बढ़ा दो 7:30 से 8:15।
0: अच्छा
1: और दूसरा सुझाव ये था, जो अपने जैसे परी सभा में अपने ये विविधा कार्यक्रम आओ है हमारी शेताओ है, इसमें हिंदी कार्यक्रम है यो,
0: हाँ
1: तो विनय भाई की बजाय या तो कोई बहन जी आ गया या कोई और
0: चलो ऐसा है
1: नया
0: देखो वो
1: आदमी आ
0: तो
1: गया तो ठीक है, उसमें ऐसे लगा जैसे कृषि जगत शुरू हो गया,
0: वो
1: विनय भाई हरियाणवी डाल लग गए, अच्छा को लग गए थे।
0: अच्छा अच्छा ऐसा है मुन्ना भाई, वो तो ड्यूटी जिसकी लगा है ना वो ही काम करता है, और जो कार्यक्रम का समय है उसमें फेरबदल करना या इस तरह की मतलब आसान काम भी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो प्रोटोकॉल हम जिसको कहें ना एक विधान के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। ये नहीं कि भाई किसी टाइम हम कुछ भी बजा सकते हैं, मान लो जो कृषि जगत कार्यक्रम है 6:20 पर जावा है तो 6:20 पर जाएगा, और
1: समझ
0: ग्रामीण
1: जाती
0: संसार है
1: है
0: 7 बजे जावा तो वो 7 ही बजे जाएगा। अब मान लो कोई फिल्म कार्यक्रम वाला ये कहने लगा कि भाई ये इसको कौन सुना है देसी प्रोग्राम को, अपना फिल्म ही चलाओ इस टाइम, तो वो भी संभव बात नहीं है।
1: ना,
0: ठीक है
1: वो
0: ना
1: संभव नहीं है, वैसे हिंदी कार्यक्रम में जो है हिंदी आदमी आ जाना कोई तो
0: चलो
1: बढ़िया लगा जी,
0: चल
1: उसमें ऐसा लगा जैसे कृषि जगत शुरू हो गया,
0: हाँ
1: विनय भाई।

0: चलो ठीक है बुना भाई,
1: पसंद कार्यक्रम पसंद आया था पिछले मंगलवार का।
0: चलो ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ सेकंड पार्ट रह रहा है, सुनवाओगे?
1: हाँ पहला भाग रह रहा है,
0: वहाँ पहला रह रहा। ठीक है, धन्यवाद।
1: राम राम
0: राम राम। हेलो हेलो,
2: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, नाम बताओ।
2: सुरेंद्र सांगवान जी, गांव बिरली जिला जींद जी।
0: जी सुरेंद्र जी बोलिए।
2: कार्यक्रम सारे बढ़िया लगा जी, कल सांग सुना था नारसिंह वाला, बहुत बढ़िया लगा जी। नारसिंह
0: जी जी जी,
2: आजादी के बारे में जानकारी थी, बहुत बढ़िया।
0: हाँ
2: आपने इसमें रेडियो में तो सारे कार्यक्रम बढ़िया हो जी, पशुपालन वाला बताओ उसमें बढ़िया बताओ जी। एक शुक्रवार ने खेती बाड़ी के बारे में बताओ।
0: हाँ एक शुक्रवार को खेती बाड़ी के बारे में बातचीत करी जा है, और एक शुक्रवार को पशुपालन के बारे में। और उसमें जो हमारे किसान भाई हैं या जो पशुपालक भाई हैं, इस हिसाब से मतलब अपना प्रोग्राम करें कि भाई अपनी जो समस्या है उसको लिख लें, और फिर बाद में जैसे ही प्रोग्राम हो है उसमें साथ में जो भी डॉक्टर साहब दवाई बताएं वो साथ में कागज और पेन रखेंगे तो बहुत अच्छी बढ़िया बात है।
2: कागज पेन लेके बैठा जी, जमा सारा सही बिल्कुल बढ़िया तरीका समझावा जमा।
0: नहीं कोशिश यही रहे भाई, एक किसान भाई ने मान लो या एक पशुपालक भाई ने फोन कर लिया, वो समस्या सिर्फ उसकी नहीं है, वो बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की या पशुपालक भाइयों की होती है।
2: जो रेडियो और सुने जी, और भी सुन लें जी, मान लेना फोन पर बात होती तो वो सुन लें।
0: हाँ वैसे सुन लो फिर, शाम को उसको प्रसारित करा जा है 6:20 पे।
2: हाँ जी हाँ।
0: तो उसको हम वहाँ सुन सके हैं। मान लो किसी भाई की का फोन नहीं लग पाया, क्योंकि अब भी देखो हम आपसे बात कर रहे हैं, कम से कम 100-200 हमारी लाइन पे अब भी चालू हैं जो अपना इस प्रयास में अब बात हो जाए।
2: चालू तो रहा जी, मैं भी चालू था जब।
0: हाँ हाँ तो आप भी थे, तो इस तरह देखो जिस भाई का फोन लग जाए वो बिल्कुल सार्थक हर प्रोग्राम में बात करे और अपना अच्छा सुझाव दे और कागज पेन साथ में रखे।
2: कार्यक्रम सारे बढ़िया लगता जी, तुम्हारी पसंद भी पूरी करो, लेकिन जी रेडियो कौन चलता जी?
0: क्या बात है,
2: फोन पे हो जी बात सारी?
0: नहीं फोन पे हुए फिर बात तो फोन से ही करनी पड़ेगी, रेडियो तो वैसे सुनना पड़ेगा, रेडियो पे तो आवाज ही साफ आवे
2: ना जी ना। और वो जो कार्यक्रम हुए कौन सुनते जी? मान ले आंधी तूफान आया था जी, उसके बाद दिक्कत आ रही है जी ना, पहले तो बिल्कुल साफ आवाज और सही आ रही थी।
0: नहीं कब आया है आंधी तूफान? अब
2: यो 15-20 दिन पहले,
0: 15-20 दिन पहले। देखो वो कोई आपके वहाँ नजदीक वाले टावर में कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ से जो कार्यक्रम चल रहे हैं ना, बहुत सारे जो श्रोता भाई हैं वो ये कहे कब आवाज़ ठीक आवे है। मान लो आपके वहाँ कोई रेंज की या कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो है, क्योंकि हम देखें भाई जो रेडियो है उसको साइड पकड़ाना जरूरी हो गया है।
2: अच्छा
0: हाँ, साइड जब हम उसको पकड़ाओगे ना थोड़ा उसको धीरे धीरे धीरे धीरे घुमा गए देखो।
2: अच्छा
0: हाँ, इस सिस्टम से फिर वो आवाज़ है वो अच्छी पकड़ जाए, और जिस जगह जिस साइड में आवाज़ पकड़ जाए ना उसी साइड में उसको करके सुन लो, वो आवाज़ साफ आएगी उससे
2: ना। ठीक है जी, धन्यवाद।
0: ठीक है, धन्यवाद जी सुरेंद्र भाई।
2: ठीक है जी, ठीक है जी।
0: हेलो,
3: राम राम भाव जी।
0: राम राम जी भाई जी, कौन बोल रहे हैं?
3: रमेश बनोगा जी, गांव कलोनी
0: जी। रमेश भाई कैसे हैं?
3: बहुत बढ़िया जी।
0: अच्छा दांत धुन लगा दिए? खर्चा तो ज्यादा हो गया भाई, बरसात नहीं हो रही, और देखो उम्मीद तो यही है भाई, उम्मीद तो यही है कि शायद कल से बरसात हो जा।
3: हाँ
0: घुट तो रहा है, घुट तो रोज ले है, फिर की करा घुटन घुटन में के काम चल रहा भाई। बरसात ही तने एक तो बढ़िया अच्छी बरसात की जरूरत है, सब राम का भरोसा है मैं भाई। हाँ रमेश भाई ये बताओ कार्यक्रम कैसे लगे?
3: बहुत बढ़िया लगे जी, आपने
0: हाँ, आपकी एक बार इस रागनी की फरमाइश आई थी।
3: हाँ जी,
0: और उसके बाद ये रागनी दो बार चल ली है
3: जी। जोर सना जी ने भी एक गाना बता दिया, कल मैंने श्रोता मंडल को फोन करा था।
0: हाँ
3: फूल गोभी जी को धन्यवाद, जो मेरी पसंद का गाना सुनवा।
0: चलो धन्यवाद उन तक जरूर पहुंचाएंगे, वह रमेश कलोई जी ने आपको धन्यवाद किया है। और सुनाइए हमारे और कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
3: आप कर दो जो खेत कर लिया नहीं आओ।
0: हाँ
3: एक तो गाने के बोल हैं घर तब आर गई को ना थरा जब तक देखा गान किया ना आने ने जी कर
0: किस कलाकार की रमेश जी?
3: तू गायक रमेश कुमार सैनी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा रमेश कुमार सैनी कलाकार है ये?
3: हाँ जी।
0: अच्छा
3: चा...

0: आणि आपण यूपी पड़वाया ये लेकिन वो सुबह से बढ़िया था था लंगानार
1: वो जो एक कठन पहले वाला वो सेकंड पार्ट तो सुनवा दिया उसका, एक रह रहा राजा नल दमयंती वाला,
0: हाँ जी हाँ जी वो
1: वो बिल्कुल नोट
0: बड़े
1: है,
0: बड़े
1: वो
0: गा रहे हैं।
1: ऐसा है, वो बिल्कुल नोट है और वो सुनवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई उसको हम मतलब वो कर देंगे, अनदेखी नहीं होगी उसकी, जरूर सुनवाया जाएगा।
0: जी सामने ला गया इतना जी क्या सुनवा जी
1: चलो ये दूसरा सुनवा देंगे, कोई नहीं उसका है।
0: उनका बनाया उड़ी
1: किसका लहना सिंह अत्री का? अच्छा
0: बढ़िया
1: हाँ, ये भी अच्छा सांग था, बहुत बढ़िया सांग था।
0: लगे जी वैसे कलाकार भी बढ़िया थे जी एक एक समझ में आती अर्जी जो गढ़वा बेन जी है ना जी
1: हाँ
0: ये मतलब बन मुश्किल जो जी हमारे बाबू
1: नहीं,
0: दादा बताया करते गढ़वा बेन जी का वो हरियाणा की शान है जी
1: बिल्कुल। रमेश रमेश
0: पर
1: भाई देखो, ये दो तीन हमारे श्रोता, उनका फोन आ लिया। अगर भाई ये बंद नहीं होगा, ये तो ये बात वो बंद करने के तो वो भी नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई इसमें कुछ शब्द हैं अस्पष्ट हो जाए हैं, क्योंकि उसमें गढ़वा की आवाज़ और बिंजू की आवाज़ में कलाकार की आवाज़ दब जाए है।
0: मैं गढ़ा हाथ नहीं होता लेकिन सब मुझे मजा आ गया है
1: हाँ
0: जी
1: चलो, कोशिश करते हैं कि जो साफ साफ रागनी है ना उनको।
0: तकरीबन जी जो गाय के रेडियो मंगाओ हजे साफ है कि कोई बात नहीं होने वाली कार को ना जी
1: चलो
0: रेडियो का मंगाना को
1: नहीं,
0: चलेगी तो हाँ
1: हर तरह की जो रागनी है वो चलेंगी उसमें, चाहे कच्चे
0: जी
1: साज के हम
0: आप
1: कहें
0: बढ़िया
1: चाहे।
0: मनोरंजन करवाओ बाबू जी ये दो बात जरूर सुनवाइयो जी
1: चलो चलो बिल्कुल कोशिश करते हैं। बस देखो रमेश जी, जब ये बात मिल गई तो हम पूरी कोशिश
0: कौन से
1: करेंगे।
0: आपके पास है।
1: और आपका एक सुझाव है शिव जी का ब्याह सांग का,
0: हाँ जी
1: ये
0: समझ
1: सुनवाओगे।
0: में हाँ जी
1: ठीक है, धन्यवाद रमेश भाई,
0: राम राम बाबू जी
1: राम राम। हेलो,
0: टेलीफोन तो कट गया था सर
1: हाँ जी नाम। हेलो,
0: हेलो
1: हाँ जी नाम बताओ।
0: सुरेंद्र भाई राम राम
1: राम राम जी, राम राम, नाम बताओ।
0: मैं सतबीर बोल रहा हूँ वो सुनारिया से। हाँ
1: सतबीर जी
0: जी
1: कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया आप कैसे हो भाई साहब।
1: बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम कैसे लग रहे हमारे?
0: प्रोग्राम तलट गाड़ दो कल शाम सुनया था बहुत बढ़िया लग गया सारे बुजुर्ग बूढ़े खुश हो गए भाई पहली बार सुने हमने।
1: चलो, बहुत
0: अच्छा
1: ये बहुत अच्छा सांग है।
0: बहुत बढ़िया है सुरेंद्र भाई
1: हाँ जी
0: और सारे प्रोग्राम बहुत बढ़िया लग रहे कोई किम्मा कहे कोई किम्मा
1: चल,
0: कहे
1: ईसा
0: एक
1: है।
0: के बाद में चार चार बदरा दे अरे दूसरे सोचता ने बता दी भाई ये ना उसका दमयंती का था सांग जो पहला भाग था सुनवा देंगे भाई
1: हाँ देखो, वो ईसा है कि
0: बार बार बार बार टाइम ना खराब करें सुरेंद्र भाई अपना
1: चलो अपना और सुझाव दो जी।
0: सुझाव यो सही है हमारे बुजुर्ग कह रहे सारे एक
1: हाँ
0: पंडितियां की आवाज मदाकिनी हर बहुत दिन हो गए सुनाए
1: कौन से पंडित जी आगे, नाम बताओ गायक का।
0: पंडित ये मास्टर सतवीर सिंह की आवाज में से।
1: मास्टर सतबीर जी की।
0: हाँ जी पड़पड़ की मेरी पाटड़ी री रेशम की मेरी झूल पंडित लक्ष्मीचंद की बनाई रागनी थी ये
1: रेशम की मेरी पाटड़ी,
0: हाँ
1: ये अब
0: रेशम की
1: एक बार
0: मेरी
1: साम
0: झूल पड़पड़ की मेरी पाटड़ी सुंदर
1: ये एक बार सामन लाग लेने दो, दो तीन एक दिन में फिर यार रागनी जरूर सुनवाएंगे।
0: इंदर भाई ला क्या समझ पहले कर दे इतने जल्दी कर
1: ना ना
0: सुना हो
1: ना,
0: गया
1: देख दो
0: आपने
1: दो दिन रह रहे हैं पर सतबीर जी, बनी लग गया है। और
0: ठीक है
1: जरूर
0: भाई साहब ज्यादा बात नहीं करते और
1: चलो
0: भाई सोता
1: ठीक
0: मैं
1: है,
0: तो राम राम
1: चलो धन्यवाद आपका, आपने समय
0: हेलो
1: का जो है सोचा और भी हमारे श्रोता है। हेलो
0: जयराम जी भाई
1: जी,
0: साहब
1: जयराम जी की नाम बताओ।
0: मैं बनवारी बोल रहा हूँ नरवट
1: बनवारी जी, गांव कुढ़ा
0: गामरी
1: नेहरूगढ़।
0: नरवट गामरी कोसड़ी पास
1: जी जी जी जी
0: रात ने सांग सुने बढ़िया
1: हाँ जी,
0: ढाई बजी रागनी सुनी पूरणमल की बढ़िया लगी
1: चलो बहुत अच्छी बात है। सुझाव क्या है आपका, किस
0: मैं
1: तरह
0: सुझाव यो
1: हमारे
0: इतना
1: कार्य?
0: बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और यो भाई बता रहे हो ना
1: हाँ
0: एक आग भाई नर दमयंती को पहलड़ो किस्सो बार
1: हाँ
0: बार में कहानी की किस्से
1: नहीं
0: हो
1: नहीं
0: तो
1: कोई
0: सुना
1: नहीं,
0: दो आप
1: वो ध्यान में है और जो पहला भाग है वो जरूर सुनवाएंगे
0: तो एक
1: बनवारी
0: वो
1: जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: ताप सिंह सोमवती को सांग और सुनवाइयो
1: वो पिछली बार भी था, देखो सारे सांग एक बार तो सुनवाए नहीं जा सकते,
0: हाँ चलो
1: बाकी
0: चलो
1: इनके नंबर आओगे जो आप लिखवाओ हो ना,
0: हाँ जी
1: उनके नंबर मान लो किसी का एक बार पहले आ जाएगा, किसी का दूसरी बार आ जाएगा, क्योंकि जो ये दूसरा और चौथा जो एतवार हो है ना
0: हाँ जी
1: रविवार
0: हाँ
1: है,
0: जी हाँ जी
1: उसको
0: हाँ
1: ये
0: जी
1: सुनवाए जा हैं।

0: तो महीने में तो ये दो ही जा सके हैं जी, ठीक है ना।
1: तो बढ़िया प्रोग्राम,
0: चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, नाम बताओ जी।
2: राकेश बोल रहा हूँ सर।
0: राकेश कहाँ से बोल रहे जी?
2: जिला जींद गांव रोहतक
0: जी। राकेश भाई, क्या हमारे कार्यक्रमों में किसी प्रकार की आपको?
2: बिल्कुल जी, आपके सभी प्रोग्राम अच्छे आ रहे हैं। मेरा एक सुझाव है सर, जिस तरह ये सवेरे ये लोक संगीत आता है ना,
0: हाँ,
2: तो इसमें ज्यादा से ज्यादा शब्द सुनाने की कृपया कीजिए।
0: लोक संगीत में,
2: हाँ जी,
0: इसमें क्या है, कई बार राकेश भाई जो ये शब्द है ना, पहले तो बात ये इतने नहीं है कि इनको हम हर रोज सुनवा सकें।
2: नहीं, रोज तो नहीं कर,
0: और
2: जो कम हफ्ते में एक दो बार तो होना
0: चाहिए। वो उसमें क्या है कि ये ज्यादातर उसमें जो रागनी है ना, वो शब्दों के ही हिसाब किताब में, जैसे हम पक्के साज की रागनी उसमें ज्यादातर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पक्का साज है ना, उसको कुछ डिमांड भी हमारे जो भाई हैं श्रोता उनकी ये रहे, वे पक्के साज की रागनी ज़्यादा सुनो, तो उसमें सुनवाए हैं, और जो शब्दों संबंधी आपने बात करी ना, उनको भी बीच बीच में सुनवाया जा है, वो चाहे किसी भी प्रोग्राम में हो, मेरे ख्याल में तो एक आध शब्द तो हर रोज़ सुनवाया जा है, और बार बार एक कलाकार को हम सुनवाएं, वे मान लो दयानंद और उनके साथियों को सुनवा दिया, समुंदर और उनके साथियों को सुनवा दिया, हाँ, तो उसमें कौन सा कलाकार है जो आप सुनना चाहते हैं?
2: नहीं, ध्यान से अलग और भी कोई कलाकार होंगे, किसी के भी सुना दो।
0: और हैं, पिछली बार शायद मैंने ही उनको समुंदर दास और उनके साथियों को सुनवाया था।
2: हाँ,
0: और एक और भी है, उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, वो उनका भी सुनवाया था। ये नहीं है भाई हम सिर्फ दयानंद के ही सुनवाओ हैं, दूसरे हैं उनके भी सुनवाते रहो।
2: नहीं सर, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सर, शब्द चाहे कोई सा भी कलाकार हो,
0: हाँ,
2: किसी को भी सुनवा दो सर।
0: चलो, जरूर इसको लिख लिया, ये ध्यान करेंगे, ठीक है।
2: ओके सर,
0: धन्यवाद। हेलो,
3: राम राम भाई
0: जी। राम राम जी, नाम बताओ।
3: मास्टर सुंदरपाल कौशिक कलंगा से बोलो।
0: कलंगा से सुंदरपाल कौशिक जी।
3: हाँ
0: जी जी, सुंदरपाल कैसे हो?
3: बिल्कुल भाई, आकाशवाणी परिवार अपने के है, एक कई बार के एक मसोतुस में है।
0: हाँ,
3: जैसे 8:30 बजे अपना,
0: हाँ,
3: इसमें लगभग तो जो पक्के साध की रागनी है वो सही है।
0: हाँ,
3: वैसे आओ डेली सुनो आपका, और फिर दो फास्ट मेरा मन पसंदीदा प्रोग्राम है 2:30 बजे खेत खलिहान, जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर का मुकाबला एक होना, असली बात यह है।
0: अच्छा, नहीं खेत खलिहान तो सारे भाई बढ़िया कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
3: तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, चाहे
0: हाँ।
3: भाई बलजीत हो, चाहे आनंद भाई हो, चाहे कोई हो, क्योंकि पूरी जानकारी किसानों के लिए आप बड़ी सम समझ जानकारी देते हो, खाद बीज पानी।
0: हाँ हाँ, देखो उसमें
3: इसकी मास्टर सतवीर की सुना दिया करो।
0: चलो, वो एक और भी हमारे श्रोता ने कहा है मास्टर सतवीर जी की, रेशम की मेरी पाटड़ी वाली रागनी जो अब सावन लगेगा, वो जरूर कोशिश करेंगे। इनकी और भी बहुत अच्छी अच्छी रागनियां हैं। और सुंदरपाल जी, अब जो कार्यक्रम का समय है ने, वो समाप्त हो गया, अब इजाजत चाहूंगे आपसे और सभी श्रोताओं से।
3: धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन श्रोताओं ने भी फोन किया, अपना जो सुझाव है उसको नोट कर लें, और सप्ताह में जैसे ही ये सोमवार को प्रोग्राम हो, तो उसमें जो हमारे जो सुझाव लिए जाएं उसमें जरूर बताएं सभी श्रोताओं को, और आकाशवाणी परिवार की तरफ से भाई जितने भी आगे त्यौहार तीज त्यौहार आओ, उन सब की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सुरेंद्र भाई ने इजाजत दो, सारे बाण भैया ने राम राम।

रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर, न्यूज़ जोन AIR और DTH पर। 7:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। उससे पहले आपको दे दें कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे सूचना है। ये सूचना हमें मिली है थाना शिवाजी कॉलोनी ज़िला रोहतक से। इसके अनुसार विकास गांव करोथा सूचित करते हैं कि उनके चचेरे भाई दीपक सनोफ रणधीर सिंह जनता कॉलोनी रोहतक से लापता हैं, जिसकी उम्र करीब 35 साल है। रंग गेहुआ है, लबूतरा चेहरा है, पतला शरीर, कद 5 फुट 6 इंच है। शिक्षा की बात करें तो MA पास है। जब गुम हुए थे तो लोअर और ब्लैक कलर की टी शर्ट इन्होंने पहनी हुई थी। इस व्यक्ति के बारे में कोई भी सूचना यदि आपके पास है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक में संपर्क आप साध सकते हैं। फ़ोन नंबर रहेंगे 7082999119। अन्य नंबर है 8295268100। एक अन्य सूचना मिली है, ये भी थाना शिवाजी कॉलोनी ज़िला रोहतक से मिली है। इसके अनुसार महावीर गांव भंबेवा ज़िला रोहतक सूचित करती हैं कि उनकी बेटी तन्नू, जिसकी उम्र 19 साल है, लापता है। कद 5 फुट 3 इंच है, रंग हल्का सांवला, चेक की नीली लाइन की शर्ट व जींस की नीली पैंट और पैरों में स्पोर्ट्स शूज़ पहनी हुई थी जब ये लड़की लापता हुई थी। जिस भी व्यक्ति को इस लड़की के बारे में कोई भी सूचना है तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क स्थापित करें। 7082999119। एक अन्य नंबर है 01262247200। सूचनाएं समाप्त हुई। अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हैं ये दिल आशिकाना इस फिल्म के गीत के साथ। युगल आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। समीर की बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी रोहतक से। अब वो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, कंपनी फिल्म से गीत आपको सुनवाते हैं। अल्ताफ राजा की आवाज़ है, ताबिश रोमानी ने इस गीत को लिखा है और संदीप छोटा ने इसके लिए संगीत बनाया है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हिंदी मीडियम, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आइए सुनते हैं गुरु रंधावा की आवाज़ में।

इस गाने के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। फिल्म संगीत कार्यक्रम का शेष भाग 8:15 से सुनेंगे। अब जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से अगला प्रसारण सुनने के लिए।

सुनते हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के

बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा।

का हैं, पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। चार बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 बजे कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आएं और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभा में नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खरगे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खरगे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खरगे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खरगे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे जबकि विपक्षी

0: सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का शेष भाग। आपको सुनवा रही है तनु वर्स मनु फिल्म से गाना, आवाज़ ज्योति नूरान की है।

इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी रोहतक से अब लीजिए सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं ए हरिहरण, सुनते हैं इनके स्वर में कुछ गजलें।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे।

0: 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की 1 तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरूआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई

0: अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Public Examinations Amendment Bill introduced in Lok Sabha proposing stricter action in paper leak cases. Both houses of parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition on alleged police action during protests over NEET issue. Uttar Pradesh government sets up 4-member SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include forensic auditor in team. New Delhi summons Ukrainian ambassador lodging strong protest over death of an Indian national in vessel attack. Deep depression over northwest Bay of Bengal triggers widespread torrential rainfall across Orissa. Orange alert for heavy rainfall issued across North India. And in Commonwealth Games, weightlifter Gyaneshwari Yadav clinches silver medal in women's 53 kg category. And now the news in detail. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
3: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the
4: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. You have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt this debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
3: Despite repeated appeal from the chair and the government, the opposition members were on their feet in both the houses. As the pandemonium continued, both Lok Sabha and Raj Sabha were adjourned for the day to meet on Tuesday. During the ongoing monsoon session, so far, no substantive business has been transacted in Parliament. With Anupam Mishra, Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
2: The Uttar Pradesh government today informed the Supreme Court that it has set up a 4-member Special Investigation Team or SIT headed by Inspector General of Police for the Lucknow Range, Kiran S., to probe the alleged embezzlement of the donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. The team will also include a DIG rank officer, a senior superintendent of police and an additional SP. The top court asked the state government to include a forensic auditor as the 5th member of the SIT, which will submit its first status report within 2 weeks. The bench was hearing a batch of petitions seeking a CBI investigation into the allegations of embezzlement of donations and audit of the Temple Trust finances. Meanwhile, a special court in Uttar Pradesh today extended the judicial custody of all 8 accused in the alleged Ram Temple donation theft case by 14 days. The Bombay High Court today granted permission to Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari to file a civil suit against Meta Platforms, X-Corp, Google LLC and other unidentified persons over the alleged circulation of defamatory deepfake and AI-generated content online. Mr. Gadkari has alleged that the AI-generated post falsely linked him and his family to financial gains from the ethanol blended fuel program, describing the claims as malicious and defamatory. Union Minister of Panchayati Raj Rajiv Ranjan Singh today launched the Atmanirbhar Panchayat program and the Samarth Panchayat portal in New Delhi. Mr. Singh said that these initiatives mark a significant step towards building financially empowered, technologically enabled and self-reliant panchayats in line with the vision of Viksit Bharat 2047. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian ambassador, Dr. Alexandre Polishuk, following the attack on commercial vessel MV Amorafi, in which an Indian national was killed. The ministry conveyed its serious concern over the incident and condemned in strongest terms such attacks on commercial shipping and highlighted their adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation, and international commerce. The External Affairs Ministry said in a statement that the ambassador was requested to convey to the Ukrainian authorities India's strong concerns over the targeting of commercial vessels. The ministry reiterated that such actions that endanger the lives of innocent civilian seafarers are unacceptable and must be avoided. Saudi Arabia today said that it has shot down drones fired by Iran-backed militias in Iraq. The statement posted on social media today by the Saudi Defense Ministry came as the United States and Iran paused their attacks over the weekend after weeks of escalation. The statement said the drones targeted petroleum facilities in eastern Saudi Arabia and the capital Riyadh. Thousands of people gathered in Rawalkot in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, today to march towards Muzaffarabad after talks between the Joint Awami Action Committee, JAAC, and the Pakistani authorities failed to address the demands put forward by the committee. The march comes amid a 52-day-long protest movement, with demonstrators continuing to press for the release of detainees, withdrawal of cases registered against protesters, and acceptance of their wider demands. The developments coincided with the first phase of Legislative Assembly polling in 13 constituencies of the Mirpur division. Meanwhile, the Legislative Assembly elections in POJK have been postponed until the 10th of next month in the two districts of Sudhnoti and Rawalkot due to the ongoing protest sit-in organized by the Public Action Committee. Foreign Secretary Vikram Misri began his China visit today with a meeting with CPC International Department Vice Minister Song Haiya. They discussed ways to advance bilateral ties through leader-level guidance, priority issues, and greater political, people-to-people, academic, and think-tank exchanges. Back home in Odisha, the annual Niladri Bijay, the concluding ritual of the world-famous Rath Yatra, is being observed at the Sri Jagannath Temple in Puri today. The sacred ceremony marks the ceremonial return of Lord Jagannath, Lord Balbhadra, and Devi Subhadra to the Ratna Singhasan inside the Sanctum Sanctorum. Our correspondent reports millions of devotees have gathered in Puri to witness the divine homecoming.

0: से मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
1: दिल, हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल

0: तेरा उड़ गया। के साथ ही संपन्न हुआ एक फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म थी पराया धन। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 9:30 होने को है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।
1: कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मच्छरों से होने वाले रोगों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियां भारत सहित दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वो रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होते हैं और वाहकों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचते हैं। ये वाहक आमतौर पर मच्छर, टिक, सैंडफ्लाई और पिस्सो जैसे कीड़े या ऑर्थोपॉड होते हैं, जो संक्रमित जीव से रोगाणु ग्रहण करते हैं और उन्हें दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संक्रमणों के विपरीत मच्छरों से होने वाले रोग संचरण के लिए इन वाहकों पर निर्भर करते हैं। इन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, जापानी एंसेफेलाइटिस, जीका, स्क्रब टाइफस आदि हैं। बारिश के मौसम में और बारिश के बाद इन बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है, पर डेंगू का संक्रमण बारिश के अलावा अन्य मौसम में भी देखा जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के उपाय और उपचार पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय धारीवाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331 0481, 2371 7117, 2371 7106 और 2331 4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सेंडल एट यायार न्यूज अलर्ट्स पर भी हैशटैग आस्क यायार के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन यायार और दूरदर्शन की डीटीएस सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले धारीवाल जी, ये बताइए कि मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं?
2: देखिए, मच्छर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं बात वहां से शुरू करना चाहूंगा और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो समय आपने रखा है वो बड़ा उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं और बारिशों की वजह से पानी इकट्ठा होता है और ये जितने मच्छर जनित रोग हैं, मच्छरों की आप लोग देखते होंगे कि संख्या बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उसका कारण का अपने को समझना है आज के कार्यक्रम में। और उससे जो होने वाले रोग हैं वो जैसा बताया गया कि कुछ वायरल डिजीज़ हैं, उसमें मुख्य डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी एन्केफेलाइटिस है और पिछले कुछ सालों से जिका नाम की बीमारी भी जो है वो अपने देश में रिपोर्ट हुई है
0: जी।
2: और कुछ ऐसी जो है वो डिजीज़ हैं जो वनवासी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जैसे मलेरिया है
0: जी।
2: मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है और फाइलेरिया है, उसका वैसे बारिशों से संबंध नहीं होता। और जो एक नाम लिया गया कालाजार, वो भी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उसका भी बारिशों से कोई ऐसा संबंध नहीं है, वो अलग उसका कीटाणु है, अलग कीट है उसका। सैंडफ्लाई का नाम जैसे आपने लिया, वो उससे जो है वो होता है और ख़ास करके बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कालाजार, और उसके लिए उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है और लगभग अच्छी बात है कि भारत ने लगभग उस पर विजय प्राप्त कर ली है और उसका जो WHO का सर्टिफिकेशन है हमारा वो हो जाएगा। तो मुख्य बात है कि मच्छर जो है वो इसमें तीन कैटेगरी में रखना चाहूँगा मैं। एक मच्छर जो दिन के समय काटते हैं,
0: जैसे डेंगू का है।
2: डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर का नाम आम बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है इसको, जिसको कोई भी व्यक्ति देख करके पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल डॉक्टर ही जो है वो पहचानेंगे या जो है वो जो विशेषज्ञ हैं वही पहचानेंगे। उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे टाइगर के शरीर में स्ट्रिप्स होती हैं, व्हाइट ब्लैक, इसी तरह की, तो इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है और वो दिन के समय काटता है, ये इसमें मुख्य बात है
0: जी।
2: और बाकी जो मच्छर होते हैं वो डॉन और डस्क कहा जाता है,
0: जो रात के
2: संध्या के समय पर या जो है वो प्रातःकाल
0: अर्ली मॉर्निंग
2: का। और तीसरी कैटेगरी होती है जो मिडनाइट में काटने के लिए आते हैं और खास करके
0: शिफ्ट में आते हैं
2: वो, तो इन लोगों में भी मच्छरों में मतलब एक कि उन्होंने अपना समय बांट रखा है, तो ये एक समाज के लिए मैसेज भी है कि देखिए वो अपनी जो है वो प्रजाति को बरकरार रखने के लिए कोई दिन में आता है, क्योंकि जरूरत क्यों पड़ती है उनको, मानव के खून की या पशु के खून की जरूरत मच्छरों को इसलिए पड़ती है कि उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजाति जो है वो चालू रखने के लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी का खून चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आदमी का ही, व्यक्ति का ही खून जो है वो काम करेगा। जानवरों में उनको जो है वो जूफिलिक जो है वो मच्छर कहा जाता है कि वो जानवरों पर ज़्यादा जो है वो निर्भर करते हैं। तो ये मुख्य बात अपने को ध्यान रखनी है कि मच्छर दिन में काटने वाले डेंगू करेंगे, और जो सुबह और शाम करने वाले हैं वो ज़्यादातर मॉस्किटो न्यूसेंस मॉस्किटो कहलाते हैं, वो नहीं करते हैं, बीमारी नहीं जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। और ख़ास करके जो नालियाँ वगैरह होती हैं, गंदा जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें उसकी ब्रीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। जो डेंगू का मच्छर होगा वो साफ पानी में और छोटे छोटे से आपके जैसे बॉटल बिस्लरी की बॉटल है या कप है उसमें पानी भी इकट्ठा हो गया तो उसमें भी ब्रीडिंग, तो और 7 दिन लगते हैं उसमें।
0: डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया सब में तेज बुखार आता है, लेकिन अलग अलग हम कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या होते हैं अलग अलग उनके?
2: देखिए डेंगू का लक्षण एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, कि उसमें बुखार बहुत तेज होगा और उसके साथ उसको बॉडी एक जो है वो बहुत सीवियर होगा, और उसमें एक खास लक्षण होता है कि रिट्रो जो आईज हैं, आई बॉल, उसके चारों तरफ जो है वो दर्द जो है वो रहता है और चकत्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डेंगू में खास करके ये संभावना होती है कि खून वगैरह निकल सकता है।
0: और चिकनगुनिया में?
2: चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द जो है वो होता है बुखार के साथ में।
0: और मलेरिया में डॉक्टर पीयूष?
1: जी, ये तीनों बुखार जो है पोस्ट मानसून सीजन में पाए जाते हैं। अगर पहला बुखार बहुत तेज हो, जैसे बुखार शुरू हुआ और बहुत तेज बुखार हुआ और शरीर पे लाल रंग के रैसेस हुए, और जैसा सर ने बताया कि ये तेज दर्द के साथ अगर ये होता है तो ऐसा माना जा सकता है कि ये डेंगू हो सकता है, आंखों के पीछे का दर्द इसका ही है। मलेरिया में बुखार पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि थोड़े समय तक बुखार आया, जारा कपकपी के साथ बुखार आया, ठीक हो गया। और अगर चिकनगुनिया में जो जोड़ों में दर्द होता है वो बुखार के बाद के समय में पाया जाता है,
0: मतलब बुखार ठीक होने के बाद
1: में, ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो दीर्घकालिक जो जटिलताएं के रूप में हम लोग इसे कहते हैं।
0: अच्छा, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, योगेश जांगरे छत्तीसगढ़ से। योगेश जी।
3: जी नमस्ते।
0: नमस्ते योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
3: हम ये जानना चाहते हैं, दो प्रश्न है जी। पहला ये है कि ये मच्छर जनित रोग क्या जानलेवा भी हो सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे आसपास की साफ सफाई में हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है?
2: देखिए जहाँ तक योगेश जी जानलेवा की बात है, तो ये बीमारियाँ, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में खास करके मलेरिया का प्रकोप पहले बहुत होता था, और आपको शायद जानकारी होगी, आप कौन से जिले के हैं छत्तीसगढ़ में?
0: अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया, हालांकि वो हमें सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।
2: छत्तीसगढ़ में मलेरिया का जो उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो बेड नेट्स हैं, मच्छरदानी है, और मच्छरदानी में भी ऐसी जिसमें कीट जनक पदार्थ जो है वो लगा रहता है, इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स बोलते हैं, उसके द्वारा मलेरिया की काफ़ी कमी आई है। लेकिन जो आपका मुख्य प्रश्न है कि जानलेवा ये हो सकती है यदि जो है वो समय पर दवाई जो है वो ना ली जाए, तो इसी तरह से डेंगू में भी जानलेवा हो सकता है। बहुत कम केसेस में इस तरह के जो है वो लक्षण होते हैं, और चिकनगुनिया तो नहीं जो है वो बहुत
1: मोटे आंकड़े के तौर पर अगर देखा जाए तो एक एक से लेकर के 3% तक, ये डिपेंड करता है कई सारे चीज में कौन से स्पीसीज में है, तो मलेरिया और डेंगू जो है वो जानलेवा हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर धारीवाल सर ने भी कहा। इसके लिए जरूरी है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकॉग्निशन, यानी जल्द से जल्द इसे पहचाने और उपयुक्त इलाज इसका करें।
0: तो क्या जो नियमित रक्त जांच होती है उससे शुरुआत में पता चल जाएगा संक्रमण का?
1: जी हाँ, ये जैसे मूल तौर पे डेंगू और मलेरिया की बात करें तो दोनों में खून के जांच के द्वारा इसका पता चल सकता है। किस दिन बुखार के किस दिन कौन सी जांच कराई जाए, यह जांच अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार हमें पता चल सकता है। और अब तो कई तरह के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि ये जिसकी की सेंसिटिविटी जो है 80-90% तक ऐसा रहता है, या इससे भी ज़्यादा कई केसेस में होता है, जिसमें कि हम लोग बफी कोट और जो अगर उसे अगर इसे माइक्रोस्कोप के अंदर में थिक एंड थिन स्मेयर के द्वारा देखते हैं, तो ये सारी जांच बड़े प्रमाणिक हैं और बिल्कुल आसानी से आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। तो बारिश के मौसम के बाद जब कभी भी आपको बुखार और उसके लक्षण, जिसकी चर्चा हम लोग कार्यक्रम में आगे करेंगे, तो अगर आपको वैसा हो तो आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपने डॉक्टर के सलाह पर ही आप उपयुक्त जाँच करवाएँ, और जाँच के अनुसार जो उसका उपयुक्त इलाज है वो अगर आप करते हैं तो इसमें जो हम लोग जो मॉर्बिडिटी यानी आपके शरीर को होने वाले नुकसान को और जान को होने वाले खतरे को बिल्कुल शून्य के बराबर कर सकते हैं।
2: विपिन अभी है? एक जी। योगेश जी का एक प्रश्न और था
0: जी जी।
2: कि हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है इन बीमारियों से बचने का, तो उसमें एक संदेश मैं देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के द्वारा कि सप्ताह में एक दिन, ये जो आजकल का मौसम चल रहा है मानसून का, पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते में एक बार, चाहे जो भी आपको ठीक लगे, वो नागरिक जो है वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड करके, और घर के आसपास जो डेंगू का मच्छर होता है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जो है वो जा सकता, केवल मीटर्स में ही उसकी जो है वो फ्लाइट रेंज होती है, इसको फ्लाइट रेंज बोलते हैं हम। तो घर और घर के आसपास यदि जो है वो हम हफ्ते में एक बार एक नियम बना लें कि परिवार के लोग निकलें और जो है वो ये देखें कि कहीं कोई कंटेनर तो नहीं पड़ा रह गया, कोई बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है, कोई प्लास्टिक का कप तो नहीं पड़ा है, कोई प्लास्टिक का सामान तो नहीं पड़ा है, छत पर कोई ट्यूब वगैरह तो नहीं पड़ी है, टायर वगैरह तो नहीं पड़ा है, उसको जो है वो खाली कर दें।
0: और कूलर की सफाई भी बहुत
2: जरूरी है। कूलर की सफाई में उसमें रगड़ना जरूरी है,
0: सिर्फ पानी सुखाना ही नहीं, रगड़ना भी जरूरी है।
2: रगड़ना जरूरी है, उसके पीछे साइंस यह है कि अंडा जो है वो चिपका रह जाता है दीवार से, और इसमें मच्छरों के जो अंडे होते हैं उसके द्वारा भी एक से दूसरे मच्छर को भी बीमारी जो है वो जा सकती है, जिसको हम ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये एक संदेश
0: जी। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से।
3: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते विपिन जी।
3: मेरा सवाल ये था कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो तीनों बीमारियां हैं, क्या इनका होने का कारण एकमात्र मच्छर ही होता है या फिर कोई अन्य कारण से भी ये बीमारियां हो सकती हैं, या फिर किसी कोई बीमारी हुई है तो फिर मच्छर काटने से ही होती है?
1: देखिए, विज्ञान के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो डेंगू और चिकनगुनिया ये एक वायरस की ये के द्वारा ये होता है, और मलेरिया जो है एक पैरासाइट की वजह से होता है। मच्छर सिर्फ इसे एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कराते हैं, और मच्छर काटने की वजह से यह मूल तौर पर होता है।
0: देशदीप दास है हमारे साथ अब, यह है केंद्रापाड़ा ओडिशा से। जी
4: नमस्ते।
0: आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं।
4: जी मेरा सवाल है, वेक्टर जनित रोगों का कारण क्या है?
2: देखिए,
0: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो
1: शुरू में हम लोगों ने इसके संबंध में
0: हम अभी तक ही चर्चा कर रहे थे, फिर भी संक्षेप में एक बार फिर से बता दीजिए।
2: देशदीप जी, जो वेक्टर एक शब्द है जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, बाकी ये जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स या कीट होते हैं जिसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, प्लेग का जैसे पिस्सू जो है वो जिसको ये कहा जाता है, जो इसके ऊपर रहता है, चूहे के ऊपर रहता है, और स्क्रब टाइफस का एक माइट्स होता है, छोटा छोटे जो है वो कीटाणु होते हैं, उनसे होने वाले रोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है।
0: अमित उपाध्याय हैं फोन लाइन पर सासाराम बिहार से। अमित जी क्या कहना चाहते हैं आप?
5: जी मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ सासाराम बिहार से। मैं ये मेरा ये सवाल था कि हर एक साल हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह बाढ़ आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा मच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है और वैसे भी जो छोटे मोटे जो बरसात के दिनों में और भी जगह होता है, तो हम लोग इसमें कुछ नए नए इतना टेक्नोलॉजी हम लोग अपडेट हो गया है, चाहे बहुत सारा हम लोग उपग्रह वैसा छोड़ते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या कुछ ठोस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि इसमें कुछ ठोस हम लोग मच्छर को लेकर एक ऐसा कुछ बना दिया जाए ताकि उस पे उसको कुछ मारा जा सके या कुछ वैसा कुछ दवाई या प्रयोग करके ताकि उसको कुछ मतलब परमानेंटली कुछ सलूशन हो जाए, खासकर बरसात के मौसम में।
1: अमित जी आपका विचार बहुत उत्तम है, शायद अगले कुछ वर्षों में या फिर अगले कुछ दशकों में इस संबंध में भी कुछ नई चीज़ें जो बायोटेक्नोलॉजी इसके माध्यम से हो सकता है, लेकिन जब तक तब तक के लिए जैसा कि कार्यक्रम के दरमियान में डॉक्टर धारीवाल वाल साहब ने आपको बताया है कि सप्ताह में एक बार अपने आसपास 1 किलोमीटर तक 500 मीटर तक आप जाएं, जहां कहीं भी जल जमाव की समस्या हो तो उसको आप ठीक करें, आसपास सफाई रखें। वर्तमान समय में यह सबसे उचित और कारगर उपाय है और पोस्ट जो बरसात के समय में जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन करें, यानी कि पूरे बाजू वाले ये कपड़े पहने, घर के बाहर

0: सकते हैं, लेकिन बड़े स्केल पर तो सहयोग चाहिए।
1: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें अमित जी का जो कहना है बाढ़ वाला, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं साइंटिफिक फैक्ट्स रख दूं सामने कि जब बाढ़ आती है तो ये जितने ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो शुरू में तो ये मच्छर जनित रोग जो हैं वो कम होते हैं बाढ़ वाले में, लेकिन उसके बाद जब पानी रिसीट कर जाता है, हाँ, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है, और खास करके छोटे छोटे पोखर जो बन जाते हैं,
0: जो रुक जाता है पानी
1: उसमें यदि 7 दिन से ज्यादा का होगा तो उसमें मच्छर होगा, और फिर उसका एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है
0: 7 डेज।
1: तो लगभग ये 7 डेज का उसका एडल्ट निकलने का टाइम, और उसको इन्फेक्ट होने का टाइम, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति को वो काटेगा तब जो है वो। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से पूरी जो है वो इसमें विज्ञान की तरफ, जो सैटेलाइट की बात की इन्होंने, तो वो सैटेलाइट से वो एरिया इंगित कर लिए जाते हैं, और उसमें फिर विशेष खास करके इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे वगैरह किया जाता है, जैसे पहले DDT का होता था। आजकल DDT क्योंकि बैन हो गई है, और उसकी जगह दूसरे केमिकल जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के वो हैं उनका स्प्रे होता है, और उसका प्रभाव काफी समय के लिए रहता है। तो सरकार की तरफ से ये सुविधा की जाती है।
0: हमारे अगले श्रोता है चौधरी महेंद्र सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश से। जी चौधरी जी, आप जी अपना सवाल पूछिए।
2: जी आदरणीय आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये डेंगू की बीमारी है, ये नर के काटने से फैलती है या मादा के से, और इसके लक्षण क्या है जब ये काट लेता है मच्छर?
0: डेंगू के लक्षण तो हम बता ही चुके हैं।
3: डेंगू के लक्षण ये मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है, तेज बुखार होना, शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण है।
0: अच्छा, डेंगू के प्रिवेंशन के लिए ड्राई डे का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा और बताइए।
1: देखिए इसमें इसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जो मच्छर का लाइफ साइकिल है वो यदि पकड़े अपन एडल्ट यदि पकड़ते हैं तो एडल्ट अंडे देता है और वो पानी में देता है, वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, और फिर वो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा से वो इमर्ज होकर के फिर एडल्ट होता है जो काटता है। तो ये सारी प्रक्रिया में अंडे से लेकर के और एडल्ट बनने तक लगभग 7 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर ने आज अंडा दिया और वो एडल्ट बन जाएगा। तो इसलिए यह 7 दिन का कंसेप्ट आया है कि यदि पानी आपका 7 दिन से ज़्यादा खड़ा रहा है किसी भी जगह पर, चाहे वो आजकल जैसे प्लास्टिक की चाय के कप्स वगैरह जो है वो मैं देखता हूँ जगह जगह जो है वो छोड़ देते हैं और उसका फिर कलेक्शन नहीं होता, तो बारिश हो जाती है तो उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें खास करके ये डेंगू के जो मच्छर हैं, एडीज मॉस्किटो जिसको बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटोज, वो जो है वो, तो इसलिए वो 7 दिन वाला कंसेप्ट जो है वो आया है।
0: हमारे अगले श्रोता है राकेश शिमला से।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोठाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: जी
4: जी, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे डेंगू मलेरिया जो है, अगर आप बच्चों को काटा है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा बुखार से नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को अगर मच्छर से बचाना हो?
1: राकेश जी, बच्चों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए ये जो है वो एक तरीका ये होता है कि दिन के समय में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, तो छोटी जो मच्छरदानी आती है उसमें बच्चे को सुलाएं, और बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाएं कि उसमें मच्छर के खुला शरीर जो है वो ना रहे, और तीसरी बात ये कि जो है वो जालियों का, घरों में जालियों खिड़कियां खुली नहीं होनी चाहिए, और ख़ास करके शिमला के क्योंकि आप हैं और क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का जो विषय चल रहा है उसकी वजह से भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अब जो है वो अछूता है।
0: कई पहाड़ी जगहों पर भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, नागालैंड में भी है।
1: बिल्कुल।
0: पीयूष जी ये बताइए कि डेंगू को लेकर बहुत सारी भ्रांति

0: वो क्या क्या है? जैसे प्लेटलेट्स को लेकर ही काफी बात लिखी जाती है कि इसे बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार करो, कितना सच है, कितना कारगर है ये?
1: देखिए, डेंगू को लेकर के 3-4 मुख्य भ्रांतियां हैं। सबसे पहले ये कि डेंगू के इलाज में सिर्फ प्लेटलेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहता। किसी भी मरीज को या डेंगू के सीजन में हर कोई प्लेटलेट को लेकर के बड़ा जब बहुत ज़्यादा पैनिकी होता है,
0: रोज की संख्या देखी जाती है,
1: रोज उसकी संख्या देखी जाती है, तो सबसे पहले प्लेटलेट की संख्या महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसकी संख्या बुखार ठीक होने पर, यानी 5 से 7 दिन या उसके बाद में यह महत्वपूर्ण रहता है। शुरुआती समय में बुखार का नियंत्रण करना यह ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और इस दौरान हाइड्रेशन का एप्रोप्रिएट होना यह ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और इस दौरान अगर ब्लड की जांच भी कराई जाती है तो ब्लड में जो है पैक्ड सेल वैल्यू यानी हिमेटोक्रिट की जो वैल्यू देखी जाती है वह महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले जब कभी भी डेंगू या इसकी संभावना अगर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल नाम की ही दवा लेनी चाहिए। डिक्लोफिनैक या निमोसिलाइड या ऐसे दूसरी कोई भी और दवाई जो लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बाद में प्लेटलेट की संख्या कम होती है। पहली बात, शुरू के समय में जब बुखार बहुत तेज हो तो पैरासीटामोल भी एक डेफिनेट डोज तक दिया जा सकता है,
0: जैसे
1: कि 500 से लेकर के 1 ग्राम, एक दिन में मैक्सिमम 3 ग्राम तक एडल्ट आदमी को दिया जा सकता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये रेडियो पर सुन करके लोग खुद का इलाज ना करें, ये सिर्फ एक बताने के लिए डॉक्टर के पास जा करके करें। और अगर बुखार उस समय ठीक ना हो तो फिर वो टेपिड वाटर से स्पॉन्जिंग करें, नंबर एक। नंबर दो ये हुआ कि प्लेटलेट की संख्या को लेकर के बहुत ज़्यादा ना घबराएं। ऑल्दो 1 लाख से कम की संख्या को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, लेकिन सीवियर टाइप ऑफ ब्लीडिंग की संख्या, ये ब्लीडिंग की संभावना बढ़ने के लिए 10,000 या उससे कम के लेवल पर ही प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट को चढ़ाने की ये के इंडिकेशन बनते हैं।
0: 10,000 से ऊपर हो तो जरूरत
1: बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हॉस्पिटल के में सेटअप में अगर आपको कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो वो और ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर टू ये बात हो गया। नंबर तीन, किसी भी भोज्य पदार्थ के खाने से, जैसे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बकरी का दूध या फिर पपीते के पत्ते या छाला, ये पीने की वजह पीने से जो है प्लेटलेट की संख्या बढ़ती है। मैं इस बात को बिल्कुल पुरजोर ढंग से कहना चाहूँगा कि यह एक भ्रम है। किसी भी तरह के भोजन के पदार्थ को, चाहे वो कोई तरह का फल हो, कई लोग कीवी हो गया या पपीता हो गया, ये सब के खाने से किसी भी तरह से नहीं होता। पपीते के छाले को पीने के वजह से जो है कई बार गैस्ट्राइटिस या फिर लीवर इंजाइम के बढ़ने की या हल्के तरह से लीवर में सूजन की आने की संभावना बढ़ जाती है। तो लोगों में मैं ये इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में बताना चाहूँगा कि यह बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग एक दूसरे को जो है वो शिक्षा जो है
0: हर आदमी
1: डॉक्टर बनने, तो यह नुकसान ज़्यादा करता है। तो जब कभी भी डेंगू होने, डेंगू में 95% बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सिर्फ 3 से 4% लोग हैं जिनको कि अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसमें कि डेंगू के जो सीवियर साइन जो होते हैं वो अगर उसको आप देखते रहें, आप अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के संपर्क में रहें तो ये आपका ठीक रहेगा।
0: विजय कुमार कोल्हापुर से हमारे एक और श्रोता, विजय जी।
2: जी कनक दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते,
2: विशेषज्ञों को नमस्कार।
1: नमस्ते जी।
2: हाँ, विजय कुमार महालिंगा, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवर, तहसील शहर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी
0: जी।
2: मेरा सवाल यह है कि मच्छर कट गए तो, समझो मच्छर कटे तो कौन सी क्या सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए?
1: अगर मच्छर काट ले तो फिर उसके बाद उस जगह को हल्का सा रब कर दें, और बस, ताकि वो आपको जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। मच्छर काटने से बचने के लिए ये आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जी।
0: मच्छर काटने के बाद बीमारी के लक्षण, रोग बुखार हो जाए, दर्द हो,
1: तब हो,
0: उल्टियां हो, तब आप डॉक्टर के पास जरूर जाए। धारीवाल जी, 21 जुलाई को सरकार ने डेंगू की नई वैक्सीन क्यूडेंगा को स्वीकृति दे दी है। कहा जा रहा है कि डेंगू नियंत्रण उपायों में ये मददगार साबित होगा, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करें।
3: ये बिल्कुल आपने ठीक जानकारी दी कि भारत सरकार ने ये क्यूडेंगा नाम की एक वैक्सीन है जो डेवलप हुई है, और इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इशू कर दिया है। और ये एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो इसकी टेस्टिंग होती है, और पहले भी ये बात चली थी और डेंगू की वैक्सीन जो है वो आई थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं जो है वो किया

0: था। इस बार वाली जो वैक्सीन आई है ये क्यूडेंगा, ये अभी लाइसेंस हुई है मार्केटिंग करने के लिए। अभी इसका उपयोग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, जैसे और दूसरी टीके लगते हैं बच्चों को, चाहे वो डीपीटी का हो, पोलियो का हो, या आजकल पेंटावेलेंट जो है वो दिया जा रहा है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जा रही है, तो ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी ये क्यूडेंगा वैक्सीन उस स्थिति में नहीं है,
1: भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं।
0: भविष्य में इस पर जो अपना भारत सरकार का एक नियम है उसके द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जो है वो कि जब मासेस में यूज होगी
1: जी,
0: मतलब इसमें आपके प्रोग्राम के द्वारा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डेंगू बुखार होता है वो चार तरह के है वायरल, लेकिन चार तरह के अलग अलग इसके वायरसेस होते हैं, जिसको डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 ऐसा नाम जो है वो दिया गया है। डेंगू 1 और डेंगू 3 माइल्ड होता है
1: जी,
0: और डेंगू 2 और डेंगू 4 ये सीवियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसमें जो कहा जाता है कि ब्लीडिंग की जो है वो टेंडेंसी हो सकती है। तो वो जो है वो आपस में कैसी रिएक्ट करेंगे
1: जी,
0: तो वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जब यूज होंगे मासेस में तब उसका।
1: पीयूष जी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो म्यूनिसिपल एजेंसीज और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं मच्छरों को दूर रखने के लिए, संक्षेप में?
2: जी, ये इन बीमारियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी व्यक्ति, हर व्यक्ति और RWA की है। अपने आसपास जहां कहीं भी पानी अगर जमा हो रहा हो तो सप्ताह में एक दिन सभी लोग बाहर निकलें और उसके बाद ये करें, यह बीमारी जो है वो ठहरे हुए पानी में ये से फैलता है। अगर ठहरे हुए पानी में आसपास अगर सफाई रखेंगे तो सरकार को और हम सभी स्वास्थ्यकर्मी को नियंत्रण करने में काफी मदद मिलेगी।
1: अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSJTalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का यंग यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
4: मीडियम वेव 262.4 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।

आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, कलाकार थे यशपाल। हम आकाशवाणी रोहतक से बोल रही हैं, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है मन चाहे गीत कार्यक्रम।

मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। संतोष शिखावत की ओर से आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की चिट्ठियों का भी कार्यक्रम में स्वागत है। और कार्यक्रम का पहला गाना सुनवा रही हैं आप सभी की फरमाइश पर मॉडल टाउन करनाल से आप हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनील शर्मा और नरेंद्र तनेजा। गोला बाज़ार बक्सर से हमारे श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। मुक्तसर से आप हैं बाबू सिंह दीवान, बलजिंदर कौर और नवनीत, साथ में इनके निशु। पुणे से हमारे श्रोता हैं पंकज, वाडवदे, आर्य और आदि। जरुड़ वरुण से आप हैं बाबा साहेब बाडोदे, मीनाक्षी चरपे और रजनी कानीरे। ये श्रोता हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत घोणकर, सरिता, प्रिंस श्रीकांत, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत घोणकर, प्रणीता। आकाश हाइट्स नागपुर से आप हैं शैलेश घोणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित, धनी और परी। जाभरून से आप हैं दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजनन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, साध्वी और गणेश। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं वक्त फिल्म से गीत, आवाज़ मनाडे की है, साहिर के बोल हैं, रवि का संगीत है।

0: तुझ पे कुर्बान मेरी
1: जान। वक्त फिल्म से गीत हमने सुना, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आइए सुनते हैं आसपास फिल्म से गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फरमाइश आप सभी की है। आप हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष। लच्छनपुर से आप हैं छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, अनक्ष और आरू। चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं सतीश, अनेजा और बिमला। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। संबलपुर कांकेर से चिट्ठी लिख भेजते हैं फागुर राय, यादव, ज्योति, ओजस्वी, इशिका और तेजल। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां का खाते में मिला है। और ये श्रोता हैं भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित।

फर्स्ट फिल्म से गाना हमने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में. आइए अब सुनते हैं आशा फिल्म से गाना. आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की. आनंद बख्शी ने इस गीत को रचा है और इसके लिए धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने. और सुनवा रहे हैं आप सभी साथियों की फरमाइश पर. महाराष्ट्र हिंगोली से आप हैं शाहजी बुड़की, नंदा हनुमान, उत्तम स्वराज. राजनगर मधुबनी बिहार से आप हैं कुश्वेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा रानी, रंका रानी, मौसम, संगीता, रुद्र, रिद्धि. ऐशबाग पिली कॉलोनी लखनऊ से हमारे श्रोता हैं मुकेश गुप्ता, रानी, कुसुम, पलक और साथ में इनके पंकुरी. राजनगर गांधी चौक से खत लिख भेजती हैं मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मयराज और गुनगुन. सुरेशवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर. दतरंगी से हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा. गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदली, आरती. कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय की चिट्ठी हमें मिली है. तो आइए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर ये गाना.

हीरो, जी हाँ, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत आइए सुनते हैं। आवाज़ें हैं मनहर और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी ने इस गीत को रचा और इसके लिए तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और पसंद आप सभी की है। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। सनावत से आप हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद अलकमस खत्री, साथ में इनके रमेश गौड़। हनुमानगढ़ से श्रोता हैं जगबाल सिंह डागला, शोभा नायक। मलोट पंजाब से खत लिख भेजते हैं राजकुमार इंदौरा, विमला इंदौरा, गैरी निवास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना और मिशेल खन्ना। नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर रेखा, गगन सोनी, सीता और गीता। आप हैं नया पारा भिरई से बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईश्वरराज, चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्राची और ट्यूसी। मलोट पंजाब से आप हैं रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप और आरजू जाजूरिया। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं हीरो फिल्म से ये गाना।

फिल्म से गीत हमने सुना, आइए सुनें कार्यक्रम का आखिरी गाना। आप सभी की फरमाइश पर आप हैं बेरड़ी से गुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक करमरकर और प्राची, साथ में इनके तनु करमरकर। बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष का खत हमें मिला है। सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश पर दादा फिल्म से गाना, कुलवंत सिंह की लिखी रचना है, उषा खन्ना का संगीत है।

0: साथ ही संपन्न हुआ मनचाहे गीत कार्यक्रम आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर $89 और $0.74 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी